नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वाग रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम 9 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य, संस्कृति और त्योहार को लेकर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताई गई हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो साथियों, ये थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंभ प्रेम से होता है, स्वयं से प्रेम। परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक। परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवरा हंग्र किसान भाई बुनने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हम रेडियो हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सब दुन घणे मान स्वागत करा हां अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के किसान भाई बुनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थई गए हां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो किसान भाई बुनो आज हमारी आप तक की बातचीत नो विषय है कि आपड़े बागवानी में विविधीकरण हरते कर। तो किसान भाई बुनो अणा विषय माते अमारी अब तक घणा कनी वाते थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले अपने हामरी लागी ने मोरे करा अपनी वाते।

0: किसान भाई बुनु गीत तो आयशु पुरुन ने गीत बात एक वगत फिरी आप सब नु घने मान स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी में। जेम की अमे गीत के पहले आपने विषय बता दीदू थू के आज आपने बात करवा वाला हूँ की सब्जी नी बहुपूरक खेती आपने हरते करी शक। तो किसान भाई बहनो अड़ा विषय माते जानकारी आलवा बल्ले आज अपने स्टूडियो में पधारे तक है श्रीमान प्रमोद जी रोकड़िया साहब। तो सबसे पहले अपने हामरी लड़ा नी बातें ने मोरे कर आपड़ी बातें। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागर रेडियो परिवार में।
1: वागर रेडियो के सभी श्रोतागण आपको सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
0: जैसा कि सर हम सभी जानते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन है वो खेती बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन खेती में कुछ ऐसी तकनीकी कुछ ऐसे नए तरीके अपना कर हमारे जो किसान भाई बहन है वो उसमें एक नवीनीकरण ला सकते हैं। तो आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो बागवानी में विविधीकरण कैसे लाएं।
1: किसान भाइयों, विविधीकरण की बात कर रहे हैं और अपन बागवानी की बात कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: बागवानी के अंतर्गत अपने पास में सब्जियां भी आती है, बागवानी में हमारे पास फल भी आते हैं जैसे आम वगैरह है, और बागवानी में हमारे बगीचे और ये फूल वाले ये भी आते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आज अपन जब विविधीकरण की बात कर रहे हैं यानी कि कोई ऐसी नई चीजें जो बागवानी के अंतर्गत आती है, तो हम सब्जियों के बारे में आज बताना, क्योंकि हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती बहुत ऐसे करते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: और उसमें हम विविधीकरण करके किस तरह से हमारे जमीन के ऊपर एक खेत का जो हमारा एक सीमित संसाधन है उसमें हम कई सारी फसलें कैसे एक साथ कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इस बारे में अपन बात करेंगे और इसके अंतर्गत जो अपन एक बहुत ही प्रचलित शब्द है बहुपरक खेती।
0: जी बिल्कुल सर।
1: तो बहुपरक खेती के बारे में आज अपन बात करेंगे।
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम बागवानी में विविधकरण की बात कर रहे हैं तो उसमें हम आज सब्जियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आज हम एक बहुत प्रचलित शब्द है सब्जियों को लेकर कि बहुपरक क्या है, तो सबसे पहले सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसे हमारे किसान भाई बहन कैसे समझ सकते हैं।
1: बहुपरक खेती जैसे अपन बात कर रहे हैं तो जैसे हमारा जो खेत है तो उसमें जो खेत के कई सारे स्तर होते हैं तो उसके सिद्धांत पे हमको ये खेती की बात कर रहे हैं बहुपरक।
0: जी हाँ।
1: यानी कि कई सारी परतें भी समझ सकते हैं, बहुपरत भी समझ सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सर।
1: अगर हमने सामान्य भाषा में समझे तो बहुपरत भी समझ सकते हैं, वैसे ये बहुपरक है शब्द। तो उसमें उसका जो सिद्धांत होता है कि हम ये एकीकृत खेती करें और उसके अंतर्गत हम जमीन का अधिक से अधिक उपयोग लें, मिट्टी का अधिक से अधिक उपयोग लें।
0: जी जी।
1: और जो हमारा सीमित संसाधन है या सीमित खेत है उसके अंदर हम अधिक से अधिक लाभ लें।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इस मूल सिद्धांत पर यह बहुपरक खेती काम करती है। इसको अपन समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमारा खेत है तो खेत के अंदर जमीन की गहराई में भी कुछ सब्जियां होती है।
0: जी बिल्कुल।
1: जमीन के परत पे भी कुछ सब्जी होती है और कुछ हवा के अंदर भी होती है। अब कैसे अगर समझें इसको बहुपरक खेती कैसे, जैसे कि जमीन के अंदर कौन कौन सी सब्जियां होती है, हमारे पास हल्दी होती है।
0: जी जी।
1: हमारे पास अदरक होता है, आलू होता है, ये तो होती है जमीन के अंदर। उसी खेत के अगर हम ऊपर लगाना चाहें तो हम कौन सी सब्जी लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं पत्ते वाली, जैसे आपका धनिया है, पालक है, मेथी है, ये लगा सकते हैं। और ऊपरी भाग में यानी कि हवा के ऊपर जो हमारे जितने कद्दू वर्गीय की सब्जियां हैं, जैसे कि हमारा टिंडा है, करेला है, तुरई है, लौकी है, या जितने भी हमारे ककड़ी है, ये इस तरह के जितने भी हम लगा सकते हैं। यानी बहुपरक खेती में हम जमीन के मिट्टी के अंदर भी काम में ले लेते हैं, जमीन के सतह को भी काम में लेते हैं और हवा के ऊपर जो सब्जियां लग सकती है उसका है। यानी कि एक ही खेत पर हम कई सारी सब्जियां का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं। और उसका मूल सिद्धांत जैसा भी हम बात कर रहे हैं कि हम उसमें उसी जमीन की अगर हमारे पास छोटा सा टुकड़ा भी है, आधा बीघा भी है, तो उसमें हम आधे बीघा के जो अपन उपज लेते हैं उसके जगह हम डेढ़ बीघा के उपज ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सर।
1: तो इस तरह की खेती को हम नए जो फसल विविधीकरण के अंतर्गत ये बहुपरक खेती भी आती है, यानी कि हम कई सारी सब्जियों का एक ही खेत पर उपयोग लेके बुवाई करके और उसको ले सकते हैं।
0: जी
1: तो इस तरह से जमीन की गहराई में, तो इसका सिद्धांत में क्या हुआ कि हम जमीन के मिट्टी के जो प्रत्येक जो उसकी जगह है उसका उपयोग ले रहे हैं।
0: जी बिल्कुल सर।
1: क्योंकि सबके जड़ें अलग अलग होती है। अभी अपन जो सब्जियां होती है जड़ के अंदर वाली, तो उसका अदरक वगैरह है वो जमीन के अंदर होता है, उसका जो स्थान है होता है वो डेढ़ फीट अंदर का आता है।
0: जी जी।
1: ऊपर का जो है वो जिसे अपना धनिया वगैरह होता है बिल्कुल परत पे होता है, इसकी जड़े बिल्कुल गहरी नहीं जाती,
0: नहीं जाती है। जी
1: और
0: जी।
1: जमीन के ऊपर ही रहती है, यानी कि उसमें जो जड़े हैं तो वो जो मिट्टी का से खेत वो लेती है अपना पोषण लेती है उनको उसका फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर अपन ने कद्दू वगैरह लगाया तो उसकी तो पौधा ही दूर दूर होता है तो उसमें और वो हवा में जाता है, हमारी झाड़ियों पे चला जाता है। हम अगर उसको अपने खूंटियां लगा के तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, या हमारे घरों में घरों के ऊपर अपन चलाते हैं वेले जो कहते हैं
0: जी जी।
1: तो उसका भी हम लाभ ले लेते हैं। तो इस खरीद खेती में हम तीन स्तर पे लेते हैं। इससे क्या ये इसके सिद्धांत में क्या भी ये भी है कि जो हम प्रकाश की बात करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है या जो पौधों को आवश्यक रूप से गर्मी चाहिए तापमान चाहिए तो वो भी उसका विभिन्न जगहों पर मिल जाता है। आपस में पौधों से पौधों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, एक फसल से दूसरे फसल के बीच में हवा के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती, प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती, और जो उसका पोषण है जो पोषक तत्व उसका आवश्यकता उसके लिए आपस में उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। तो इस तरह से तीन स्तर के ऊपर हम बहुपरक खेती कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने आज बहुत अच्छी बात हमारे किसान भाई बहनों को बताई है कि वो बहुपरक खेती को अपना कर अपनी जो आजीविका है वो उसे बहुत अच्छे से ले सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनके पास खेत होता है लेकिन वो एक ही फसल ले पाते हैं, या तो वो भिंडी कर रहे होते हैं या वो कोई एक विशेष सब्जी ही करते हैं। लेकिन जैसा कि आपके माध्यम से हम जान पाए कि इसमें तीन परतों के हिसाब से हमारे किसान भाई बहन हैं वो खेती कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें सिंचाई भी सीमित मात्रा में करनी होगी और खाद जो वो एक ही खेत में डालते हैं उसी खेत से उनको बहुत सारे उत्पादन मिल जाएंगे,
1: उसी खेत से उत्पादन मिल सकता है। और अलग अलग क्योंकि जितनी जड़ें जिस हिसाब से जाती है उस हिसाब से वो खाद लेगी
0: जी जी,
1: तो उस हिसाब से उसका पोषण भी हो जाएगा
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये तो हम तीन की बात की, मूल सिद्धांत तो तीन का ही है, मिट्टी के अंदर, मिट्टी की सतह पर और मिट्टी का हवा में
0: जी बिल्कुल,
1: तो तीन है। लेकिन अगर इसको हम और वैज्ञानिक बात करें तो हम इसको पांच भाग में बांट सकते हैं
0: जी बिल्कुल।
1: पांच भाग में बांटने के लिए कैसे बात करेंगे कि जैसे तो अपना पहला तो है अपन जमीन की बात करी
0: जी हाँ,
1: जैसे अदरक है ये अपना जमीन की है, अदरक है, हल्दी है ये जमीन के अंदर होती है। फिर दूसरा जमीन की सतह पे, सतह पे कौन सी फसलें होती है कि जो अपना जैसे जो छोटी फसलें होती है धनिया है, मेथी है
0: जी जी।
1: ये पालक है, ये हमारी जमीन की सतह पे होती है। इसके ऊपर की बात कौन सी करेंगे, तीसरी फसल कौन सी करते हैं हम, तीसरी फसल के रूप में बात करेंगे तो हम जो हमारे मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, जो कम से कम

0: लंबी 3-4 फुट की होती है उस की बात करेंगे, उसके ऊपर चौथी फसल की बात करेंगे, तो चौथी फसल कौन सी होगी? जैसे हमारे पपीता है,
1: जी जी,
0: नींबू है, ये ऐसे फसलें हैं जो हवा में होती है, काफी लंबे समय तक चलती है,
1: जी जी,
0: चौथे फसल के रूप में। अब पांचवी फसल की बात करेंगे तो पांचवी फसल तो अपन ने पहली बात कर ली, जैसे कद्दू है
1: जी,
0: करेला है, जो हमारे वेले पे चलते हैं
1: जी,
0: तो एक ही स्थान पे हम 5 परत की खेती की सब्जियां भी कर सकते हैं
1: जी,
0: तो इस तरह से बहुपरतें तो बहुपरक खेती भी कर सकते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: अब ये बात तो अब इसकी कंसेप्ट हो गई कि किस तरह से हम करेंगे
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन अब आप जैसे अभी किसान भाइयों के दिमाग में प्रश्न भी उठने लगा होगा कि साहब आप बात तो कर रहे हो लेकिन हम करेंगे कैसे,
1: कैसे करेंगे जी बिल्कुल,
0: एक ही जमीन पे कैसे करेंगे
1: जी हाँ।
0: तो इसका भी बहुत साधारण सा जवाब है जो सभी किसान भाइयों को पता भी है, तो उसका जवाब में हम कैसे करते हैं कि हम जानते हैं कि कई सारी फसलें तो हमारी रोप पर होती है, उसकी रोप बनानी पड़ती है हमको
1: जी हाँ।
0: जैसे मिर्ची का रोप होता है, टमाटर का रोप होता है, बैंगन का रोप होता है, पपीते का रोप होता है, तो हमें इनके समय को अलग अलग बांटना पड़ेगा
1: जी हाँ।
0: जब जमीन के अंदर वाली की समय अलग है, जमीन के ऊपर वाले का समय अलग है, रोप में अलग, जो हम ट्रे के ऊपर रोप में लगाते हैं या हम उसको अगर सामान्य भाषा में हम जो ढूंढे हैं उसके अंदर रोप में लगाएंगे, पॉलीथिन थैलियों में लगाएंगे, जैसे अपना वो आता है पपीते वगैरह का आता है, वो थैलियों में लग के हमारा रोप बनता है
1: जी हाँ।
0: तो उसका जो रोप भी तैयार अलग से करते रहेंगे और उसके बीच में उनकी सब्जियों की खेती भी कर लेंगे, फिर वो जगह आएगी तो क्योंकि उनके सबके समय अलग
1: अलग अलग होंगे जी बिल्कुल।
0: तो अगर हम अपना थोड़ा सा इसको विचार को समझें और थोड़ी सी इस भाषा को समझें तो हमारे किसान भाई सभी आसानी से इन खेती को कर सकते हैं, तो वो क्योंकि वो सब जान रहे हैं कि अभी तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो रोप है तो रोप के लिए इंतजार करते हैं, रोप आएगा तब बुआई करेंगे, जब तक हमारा खेत खाली पड़ा रहे तो उसका खेत खाली ना पड़ा रहे तब उस बीच में कोई दूसरी सब्जी कर ले, और जब वो रोप वाला आएगा तो उसमें रोप लगा ले, और रोप जब तक बड़ा होगा जब तक नीचे वाली सब्जी खाली हो जाएगी
1: जी हाँ।
0: तो ऐसे हम बहुपरक खेती को अपना समयबद्ध कार्यक्रम करके कर सकते हैं, और इस तरह का ये कंसेप्ट भी चलता है कि किस तरह से इनको हम अधिक से अधिक लाभ लें, तो जिस सिद्धांत का भी काम हो जाएगा और विज्ञान का भी काम हो जाता है, और हमारे लिए क्या है क्योंकि हम जो हमारे जगह छोटी सी है, हमारे पास आधा बीघा, 1 बीघा 2 बीघा जमीन है जिसपे खेती की सब्जी कर रहे हैं, अब खेती में भी क्योंकि उस हिसाब से हमें सब्जियों की जैसे मांग बहुत रहती है
1: जी बिल्कुल सर।
0: अभी अपन देखते हैं कि कई सारे सब्जियों का भाव उसके आवश्यकता के अनुरूप चलता है
1: जी बिल्कुल,
0: उतार चढ़ाव भी होता है, और उससे हमारे को जो किसान भाइयों की आमदनी में भी एक गुंजाइश रहती है, वृद्धि होती है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी सब्जी का कब मांग ज्यादा आने वाली है, तो उसके अनुरूप हमारी खेती को करना पड़ेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि लगभग हमको प्रति व्यक्ति 300 ग्राम पर डे प्रति व्यक्ति जो है 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है
1: जी हाँ।
0: जबकि आज उसकी काफी कमी है
1: जी,
0: अगर आप इंडिया में ही बात करें तो हमारे पास करीब 240 ग्राम के आसपास ही उपलब्ध है प्रति व्यक्ति, जबकि हमको 300 ग्राम की आवश्यकता है, तो 300 ग्राम सब्जी की जो हमारे स्वस्थता के लिए चाहिए तो उसकी पूर्ति करना है, और हमें उसके साथ साथ हमारा जो सीमित संसाधन में हमको अधिक से अधिक आय करनी है
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस तरह से ये बहुपरक खेती में फसल विविधीकरण में एक ही खेत पर कई सारी सब्जियों की खेती करके हम कई सारे फसलें उगा सकते हैं
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी है कि किस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो सब्जियों की बहुपरक खेती कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, तो सर अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में यही कहना चाहूंगा कि जैसे अपन बात कर रहे हैं कि हमें सब्जियों से अधिक लाभ लेना चाहिए, सब्जियों की फसल जो है सब्जियों की खेती है बहुत ही सीमित जगहों पर होती है, जैसे हम दूसरी खेती करते हैं, जैसे हम अपना मक्का कर रहे हैं, सोयाबीन कर रहे हैं, या जो फसल हमारे बहुत बड़े हेक्टर में हो रही है, लेकिन सब्जियां क्या है कि कम क्षेत्र में होती है
1: जी बिल्कुल।
0: उसको हमें अधिक से अधिक उसका अगर उसमें वैज्ञानिक तरीके से हम सोचे, समय बस सोचे, तो हमें अधिक से अधिक लाभ मिलता है। सब्जियां इस तरह की फसलें हैं कि जिसमें हमें दैनिक आय होती रहती है, और घर के लिए भी हमारा आवश्यकता, अगर हम आय की बात भी नहीं कर रहे तो हमारे घर के पोषण के लिए आवश्यकता होती है। मैंने आपको इसीलिए बताया कि 300 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, तो इतनी सब्जियों के अगर हमारे घर में, क्योंकि जब सब्जियां अपन खाते हैं तो हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पेट का विकार और जो शरीर में जो हमारे जो विषल तत्व होते हैं उसको निकालने में सब्जियां बहुत बड़ा लाभकारी होता है, विटामिन का बहुत बड़ा सोर्स होता है वो, तो सब्जियों की आवश्यकता तो होती है। कई बार हम उसमें अपने अगर हमारे घर पे हमारे किचन गार्डन में या हमारी पोषण वाटिका में या हमारे खेत के पिछवाड़े पे इस तरह से अगर सब्जियां हैं या हमारे फसलों के साथ में भी सब्जियां हैं, तो हमारे खाने के लिए तो एक अच्छा साधन हो जाता है
1: जी हाँ।
0: किसानों के घर पे हमें तो कि हमारा जो पोषण है वो स्वतः ही मिल जाता है। एक सब्जी हम बाजार से खरीदते हैं और एक खुद ही उगा लेते हैं
1: तो उसमें बहुत फर्क होता है,
0: तो किसान भाइयों को कम से कम ये तो ध्यान रखना ही है कि अगर हम उसके लिए लाभ के लिए बात ना करें, बाजार के बेचने के लिए बात ना करें, तो हमारे घर की आवश्यकताओं की तो पूर्ति करें। और अक्सर अपन देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों के खेत में एक ही तरह की सब्जी लगा लेते हैं, भिंडी लगा ली
1: जी जी,
0: अपना लौकी लगा ली, या एक भी जो सब्जियां सीजनल आ रही है वो एक दो तीन लगा ली, लेकिन इसमें हम इस सिद्धांत पे हम कई सारी सब्जियां हमारे खेत पे उपलब्ध कराते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: हम इसको अगर आय के रूप में ना भी बात करें तो हमें केवल हमारे घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बात कर सकते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: तो हमारे सीमित जगहों पर इसको इसका बहु पर खेती का लाभ लेना चाहिए
1: जी बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपका अमूल्य कीमती समय आपने हमें और हमारे किसान भाई बहनों को दिया।
0: धन्यवाद।
1: जिम के किसान भाई बहनों अवड़े अपड़े वैस में प्रमोद जी रोकड़िया सर जुड़े तक हता ने एनाए आपने घणे असल तरीका ते की बता दीदू है कि आपड़े बहु परक खेती हरते करी सका। तो किसान भाई बहनों आशा कर रहा कि आपे भी आ बात ध्यान ते की हामरी होगा ने आप भी सब्जनी आ खेती करी ने आपड़ी आमदनी वधावोगा। तो किसान भाई बहनो वाते तो अपनी कार्यक्रम में घना कनी थी गई है, हवे टाइम भी थी गयो है अपने अणस कार्यक्रम तकी सूटा पड़वानो। तो अपने सूटा तो पड़ा पर साथे पहले हमरी लाइक और गीत मोरे पड़ा सूटा।

किसान भाई बुन गीत तो आयशु पुरु ने अण गीत बात अमे कार्यक्रम खेती वाड़ी तकी पड़ा सुट। आशा कर रहा कि आज कार्यक्रम में अमारी आप तकी जी भी बातें थी है ये आपने गमी होंगा। तो किसान भाई बुन आपने अमरु आज ना कार्यक्रम केव लगू एने बारा में आप राय सुझाव अमने आली सको अमरे अण पता मत। अमरु पतु है कार्यक्रम खेती वाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमरु पिनकोड नंबर है 3270001। હજી વધારે જાણકારી બદલે આપ મને ફોન કરી શકો અમારે અણા ફોન નંબર માટે। અમારું ફોન નંબર હે 9460051234। તો કિસાન ભાઈ બુનુ ફેરી મલંગા અણસ કાર્યક્રમ મે અણસ ટેમ માટે એક નાવિશને હાતે તારુદી રામ રામ રામ રામ।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अक्सर माता पिता छोटी सी आदत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं
0: जी,
1: लेकिन यदि समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये बच्चे के स्वास्थ्य और विकास पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज का विषय है कशिश हमारा कि बच्चों में पेंसिल, रबड़ और अन्य अखाद्य वस्तुएं जो होती हैं, वो खाने की आदत के क्या कारण हैं, क्या नुकसान है और समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि कई माता पिता ने देखा होगा कि उनका बच्चा पढ़ाई करते करते पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाता रहता है, रबड़ को काटता है, चोक मिट्टी कागज और अन्य ऐसी चीजें मुंह में डाल लेता है जो खाने के लिए नहीं होती। शुरुआत में यह केवल खेल या जिज्ञासा लग सकती है, लेकिन यह आदत बार बार और लंबे समय तक बनी रहे तो इसे गंभीरता से समझने की आवश्यक है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हर आदत के पीछे श्रोता साथियों कोई न कोई कारण होता है, इसलिए केवल डांटना या मारना समाधान नहीं है। हमें यह जानना होगा कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, इसके शरीर और मन की क्या जरूरत है और परिवार उसकी कैसे मदद कर सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना दस्तूर है कार्यक्रम का,
1: बिल्कुल,
0: तो इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों में पेंसिल रबड़ या अन्य अखाद्य वस्तुओं खाने की आदत को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर बात करें कि क्या ये केवल शरारत होती है या कोई संकेत, तो हम देखते हैं कि बचपन खोज और जिज्ञासा का समय होता है।
1: जी हाँ,
0: छोटे बच्चे अपने आसपास की चीजों को छूकर, देखकर और कई बार मुंह में डालकर पहचानने की कोशिश करते हैं। साथियों, बहुत छोटे बच्चों में ये सामान्य व्यवहार हो सकता है, लेकिन यदि स्कूल जाने की उम्र के बाद भी बच्चा बार बार पेंसिल रबड़, मिट्टी, चोक या फिर कागज जैसे अखाद्य चीजें खाने लगे, तो इसे केवल शरारत मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए माता पिता को। कई बार यह शरीर या मन से जुड़ी किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अगर बात करें तो इस आदत के पीछे ढेर सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो दोस्तों पोषण की कमी है। कई बार शरीर में आयरन, जिंक या अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है।
1: बिल्कुल,
0: जिससे बच्चों को ऐसी चीजें खाने की इच्छा बढ़ सकती है। इसलिए यदि ये आदत बार बार दिखाई दे श्रोता साथियों, तो चिकित्सक से सलाह लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, अब यही बात करें दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण है तनाव और चिंता। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे घबराहट, अकेलेपन या पढ़ाई के दबाव में पेंसिल चबाने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और ये उनके लिए तनाव कम करने का एक तरीका बन जाता है। इसी के साथ खाली समय, परेशान होना, खेलने के लिए दोस्त नहीं मिल पाना, ऐसे में भी बच्चे जो है ऐसी गतिविधियां कर देते हैं।
0: जी जी।
1: यदि बच्चा किसी रचनात्मक गतिविधि के लंबे समय तक बैठा रहता है तो वह अनजाने में पेंसिल और रबर चबाने लगता है। कुछ बच्चे दूसरों की नकल करके भी ये आदत अपना लेते हैं। यदि स्कूल या घर में कोई दूसरा बच्चा ऐसा करता है तो वे भी उसे दोहराने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, कई लोग सोचते हैं कि पेंसिल या रबर थोड़ा सा चबा लेने से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन यह आदत धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है। रबर और पेंसिल खाने के लिए नहीं बने होते, इसमें ऐसे पदार्थ होते हैं श्रोता साथियों जो शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है। इन्हें निगलने से पेट दर्द, कब्ज, उल्टी और पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कशिश,
0: बिल्कुल,
1: बार बार पेंसिल चबाने से दांतों पर भी बुरा असर पड़ सकता है, दांत घिस सकते हैं और मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। यदि बच्चा मिट्टी और अन्य गंदी चीजें मुंह में डालता है तो इससे शरीर में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इस आदत का कारण पोषण की कमी है और समय रहते ध्यान न दिया जाए तो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें अब यहाँ पर कि माता पिता क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो बच्चे को डांटने या शर्मिंदा करने से आपको बचना है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हर बार गुस्सा करेंगे तो बच्चा इस आदत को छिपाने लगेगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। आप श्रोता साथियों बच्चों से प्यार से बात करें, जानने की कोशिश करें कि वह ऐसा कब और क्यों करता है। क्या वह पढ़ाई के समय ऐसा करता है, क्या वह तनाव में है या क्या वह बोर हो रहा है साथियों। उसके भोजन पर आप ध्यान दें, रोजाना संतुलित आहार दे खाने के लिए, जिसमें हरी सब्जियां हो, दालें हो, मौसमी फल हो, दूध, दही और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल हो।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, यदि आदत लंबे समय तक बच्चों में बनी रहती है तो माता पिता को बाल रोग विशेषज्ञ से भी सलाह लेनी चाहिए।
1: जी जी।
0: या फिर आवश्यकता होने पर डॉक्टर से पोषण संबंधित जांच की सलाह भी वे ले सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। ये बातें आगे और भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से रबर पेंसिल या कोई अन्य अखाद्य पदार्थ बच्चों में खाने की आदत है तो वो किस तरीके से नुकसानदेह हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: यही श्रोता साथियों, बच्चों को व्यस्त और रचनात्मक गतिविधियों में हमें शामिल करने की जरूरत है। चित्रकारी, कहानी पढ़ना, ब्लॉक्स खेलना, संगीत, खेलकूद, बागवानी जैसी गतिविधियां उनका ध्यान दूसरी ओर ले जाती है। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में छोटे छोटे विराम दे ताकि बच्चा तनाव महसूस न करे।
1: बिल्कुल,
0: यदि बच्चा कुछ दिनों तक पेंसिल या रबर मुंह में न डाले तो उसकी प्रशंसा करें। सकारात्मक प्रोत्साहन कई बार डांट से अधिक प्रभावी होता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, शिक्षकों को भी इस आदत पर ध्यान देना चाहिए। यदि किसी बच्चे में यह समस्या दिखाई दे तो उसे पूरी कक्षा के सामने डांटना या मजाक बनाना उचित नहीं है। शिक्षक अभिभावकों से बात करके मिलकर समाधान खोज सकते हैं। यदि आवश्यकता लगे तो बच्चों को स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह भी दी जा सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो दोस्तों, बच्चों की हर आदत के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, इसलिए केवल व्यवहार को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: पेंसिल, रबर, मिट्टी या फिर अखाद्य वस्तुएं खाने की आदत को छोटी शरारत समझकर नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। अंजलि जी, ये बच्चे के शरीर को किसी कमी, मानसिक तनाव या किसी अनावश्यकता का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में एक जागरूक परिवार वही है जो बच्चों के इस व्यवहार को ध्यान से देखे, उसे समझे, उसे समय रहते सही कदम उठाए, प्यार, धैर्य, संतुलित भोजन, खुला संवाद और आवश्यक होने पर चिकित्सीय सलाह। श्रोता साथियों, ये सभी मिलकर इस आदत को दूर करने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए कि बच्चे को डांटने से आदत छिप सकती है, लेकिन समझने और सही मार्गदर्शन से आदत बदली जा सकती है। ऐसे में हमें बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, सही आदतें और ऐसा वातावरण देना है जहाँ वे निडर होकर सीख सके, आगे बढ़ सके और स्वस्थ जीवन की ओर देख सके। अंजलि जी,
0: बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि बच्चों का व्यवहार हमें हमेशा कुछ न कुछ संदेश देता है। कई बार वे शब्दों में अपनी परेशानी बता पाते हैं, इसलिए उनकी आदतें ही उनके मन और शरीर की स्थिति को व्यक्त करती हैं।
1: बिल्कुल,
0: पेंसिल, रबर, मिट्टी और अन्य खाद्य वस्तुएं बार बार मुंह में डालना भी ऐसी ही एक आदत है जिसे न तो हल्के में लेना चाहिए और न ही इसे बच्चे की जिद या शरारत मानकर नजरअंदाज करना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: हर बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है, इसलिए किसी एक उपाय को सभी बच्चों पर लागू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। यदि इसके पीछे पोषण की कमी है तो संतुलित भोजन और चिकित्सीय सलाह जरूरी है। यदि तनाव, अकेलापन और भावनात्मक असुरक्षा है तो उसे परिवार के प्यार, संवाद और भरोसे की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल,
0: सही कारण पहचान कर ही सही दिशा में समाधान मिल सकता है। श्रोता साथियों, माता पिता और शिक्षकों को यह याद रखना चाहिए कि बच्चे की आदत बदलने में समय लगता है। केवल

0: केवल डांटना नहीं बल्कि समाधान की दिशा में कदम भी बढ़ाते हैं। आज हमारी थोड़ी सी सजगता, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा ज्यादा समय बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मविश्वासी जीवन की ओर ले जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए साथियों, बच्चों की अच्छी आदतें डर से नहीं बल्कि विश्वास, समझ, स्नेह और सही मार्गदर्शन से विकसित होती है। जब परिवार बच्चों के मन को पढ़ना सीख जाते हैं तब उसका भविष्य भी अधिक स्वस्थ, खुशहाल और उज्जवल बन जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें रही है और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी समाप्त तो होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने मैं देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तकी बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हमरो घणी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
5: तो हमरो बोनू अड़ी सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हंग्र अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
4: होवे भाइयों ने बोनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिरी कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है बढ़ती जनसंख्या और युवाओं की भूमिका को लेकर। श्रोता साथियों, जनसंख्या किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकती है और सबसे बड़ी चुनौती भी हो सकती है। यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ, कुशल और जागरूक हो तो वो देश के विकास का आधार बनती है कशिश।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन यदि जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाए और संसाधनों के अनुसार उसका संतुलन न बन पाए तो यही जनसंख्या गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन जाती है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। हमारे देश की बड़ी आबादी में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है।
0: जी हाँ।
1: और यही कारण है कि बढ़ती जनसंख्या की चुनौती का समाधान भी युवाओं के हाथों में ही है।
0: बिल्कुल।
1: युवा यदि जागरूक बनेंगे और समाज को जागरूक करेंगे तो इस समस्या का प्रभावी समाधान संभव है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें आगे कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना कार्यक्रम का दस्तूर है, तो शुरुआत में पहले सुनते हैं इस गीत को।
1: जी हाँ।
0: तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बढ़ती जनसंख्या और युवाओं की भूमिका को लेकर। जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले बताया था कि भारत दुनिया की सबसे युवा देशों में से एक है।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ की सबसे बड़ी आबादी युवा आबादी है। लेकिन दोस्तों, यही ताकत तब चुनौती बन जाती है जब जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है, उसके अनुरूप संसाधनों का विकास नहीं हो पाता। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या आज केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक विकास से जुड़ा एक गंभीर विषय बन चुका है। जागृति जी,
1: बिल्कुल।
0: वैसे तो जनसंख्या बढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है साथियों, लेकिन जब इसकी गति इतनी तेज हो जाती है कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ने लगे, तब ये चिंता का विषय बन जाता है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे युवा साथियों की होती है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि आज के युवा ही कल का नागरिक, अभिभावक, शिक्षक, इंजीनियर, किसान और समाज के मार्गदर्शक बनेंगे। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण होते हैं। हम देखते हैं कि अशिक्षा, जागरूकता की कमी, बाल विवाह, परिवार नियोजन की जानकारी का अभाव तथा पुरानी सामाजिक धारणाएं बहुत सारे कारणों में शामिल होती है।
0: बिल्कुल।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग अधिक बच्चों को परिवार की ताकत मानते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अधिक बच्चे भविष्य में परिवार का सहारा बनेंगे। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच भी इस समस्या को बढ़ाती है। इसके अलावा श्रोताओं, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की कमी भी जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। जहां महिलाएं शिक्षित होती है, आत्मनिर्भर होती है, वहाँ परिवार का आकार सामान्यतः छोटा और संतुलित होता है।
0: बिल्कुल।
1: कहा गया है कशिश की शिक्षा का अगर दीप हम जलाएंगे तो जनसंख्या संतुलन अपने आप कम होती जाएगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें तो हम देखते हैं श्रोता साथियों कि बढ़ती जनसंख्या का मतलब किसी देश या क्षेत्र में लोगों की संख्या लगातार इतनी तेजी से बढ़ना है कि संसाधनों की कमी हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: यदि जनसंख्या के साथ साथ श्रोता साथियों रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, सड़कें और कह सकते हैं कि उद्योग भी गति से बढ़ने लगे तो समस्या कम हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब जनसंख्या विकास में अधिक तेजी से बढ़ती जाए तब अनेक समस्या जन्म लेती है। जागृति जी, आपने जैसा कि बताया कि बढ़ती जनसंख्या के ढेर सारे कारण हो सकते हैं, तो ऐसे में श्रोता साथियों हमारे सामने ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न होती है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि बेरोजगारी, यानी कि जब नौकरी के अवसर कम हो और नौकरी चाहने वाले अधिक होते हैं जागृति जी, तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों की संख्या बढ़ने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रभावित होती है।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे रोजगार के क्षेत्र में दिखाई देता है। हर वर्ष लाखों युवा नौकरी की तलाश में श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन रोजगार के अवसर उसी गति से नहीं बढ़ पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा बढ़ती जाती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण शिक्षा व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना बहुत कठिन हो जाता है। कशिश, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका अधिक असर पड़ता है। अस्पतालों में भीड़ हो जाती है, संसाधनों की कमी महसूस होने लगती है, गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करना और कठिन हो जाता है। इसके अलावा श्रोता साथियों, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ने से पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती है।
0: बिल्कुल।
1: जंगलों की कटाई होती है, जल संकट होता है, प्रदूषण और भूमि का अत्यधिक उपयोग भविष्य के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहा होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बढ़ती जनसंख्या हमेशा समस्या है?
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों नहीं, यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ, कुशल और रोजगार से जुड़ी हुई होगी तो वही जनसंख्या देश की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए लक्ष्य केवल जनसंख्या को नियंत्रित करना नहीं है जागृति जी, बल्कि मानव संसाधन को सक्षम बनाना भी है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं बढ़ती जनसंख्या और युवाओं की भूमिका को लेकर, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी बढ़ती जनसंख्या और युवाओं की भूमिका को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, भारत को युवा देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की शक्ति भी है। इनमें नई सोच होती है, ऊर्जा होती है, उत्साह और परिवर्तन लाने की क्षमता भी होती है।
1: बिल्कुल।
0: आज का युवा शिक्षित है, तकनीक से जुड़ा हुआ है और समाज में बदलाव लाने की शक्ति भी रखता है। अगर युवा जनसंख्या संबंधी मुद्दों को समझेंगे और समाज में जागरूकता फैलाएंगे कशिश, तो बड़ी से बड़ी सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है।
1: जी बिल्कुल।
0: युवा अपने परिवार, मित्रों, समुदाय के बीच सही जानकारी पहुंचाकर लोगों की सोच बदल सकते हैं। वे ये समझा सकते हैं कि छोटा परिवार ही खुशहाल और सुरक्षित भविष्य की कुंजी है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ हमारे युवा साथी शिक्षा को भी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: बिल्कुल।
1: युवा स्वयं शिक्षा प्राप्त करें और दूसरों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करें। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देना बहुत जरूरी है जागृति जी, क्योंकि एक शिक्षित लड़की आगे चलकर एक जागरूक माँ और जिम्मेदार नागरिक बनती है।
0: बिल्कुल।
1: यदि युवा अपने आसपास ऐसे बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करे जो आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।
0: जी हाँ।
1: साथ ही सही उम्र में विवाह का संदेश देना भी जरूरी है। युवाओं को स्वयं भी कम उम्र में विवाह करने से बचना चाहिए जागृति जी। समाज में भी कानूनी और उचित आयु में विवाह करने का संदेश उन्हें देना चाहिए। उन्हें ये संदेश फैलाना चाहिए कि पहले शिक्षा, फिर रोजगार और उसके बाद जिम्मेदारी के साथ परिवार की शुरुआत।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, ये सोच समाज में स्थापित करने में युवाओं की भूमिका बड़ी हो सकती है, क्योंकि इससे परिवार बेहतर योजना के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और जनसंख्या वृद्धि की गति भी संतुलित रहेगी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें समाज के प्रत्येक नागरिकों की भागीदारी जरूरी है, विशेषकर हम युवाओं की। युवा स्वयं शिक्षित बनेंगे और परिवार नियोजन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या संतुलन के विषय में सही जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद वे अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। सोशल मीडिया आज युवाओं के हाथ में एक प्रभावी माध्यम है। युवा इसके माध्यम से जागरूकता अभियान चला सकते हैं, जानकारी को साझा कर सकते हैं और लोगों को छोटे परिवार के लाभ समझा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हम युवाओं की सक्रिय भागीदारी जनसंख्या संबंधी जागरूकता को बढ़ा सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि युवा साथी केवल देश का भविष्य नहीं है बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी है।
0: बिल्कुल।
1: यदि वे शिक्षा, जागरूकता, जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बढ़ती जनसंख्या जैसी चुनौती भी एक अवसर में बदल सकती है। साथियों,
0: जी हाँ,
1: कहने का मतलब यही है कि जब युवा बदलेंगे तब समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तभी भारत संतुलित, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के बीच युवाओं के लिए केवल नौकरी की तलाश पर्याप्त नहीं है, उन्हें कौशल विकास पर भी ध्यान देना होगा।
1: बिल्कुल।
0: यदि युवा नए कौशल सीखेंगे, स्वरोजगार को अपनाएंगे और उद्यमिता की ओर बढ़ेंगे, तो वे स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। आत्मनिर्भर युवा देश की आर्थिक शक्ति को मजबूत करते हैं और जनसंख्या को बोझ बनने के बजाय संसाधन में बदल सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि सतत विकास का अर्थ है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना। बढ़ती जनसंख्या इस लक्ष्य को चुनौती देती है। यदि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित नहीं होगी कशिश, तो जल, भूमि, ऊर्जा और खाद्य संसाधनों पर भी दबाव बढ़ेगा। इसीलिए युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, जल बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आदत अपनानी होगी।
1: बिल्कुल।
0: युवाओं की छोटी छोटी पहले बड़ी बड़े बदलाव ला सकती है श्रोताओं।
1: बिल्कुल।
0: जागरूक नागरिक बनकर वे सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, तो ऐसे में हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना है कि हम केवल जनसंख्या बढ़ाने वाले नागरिक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले जिम्मेदार नागरिक बनेंगे साथियों, क्योंकि किसी भी देश की असली शक्ति उसकी आबादी की संख्या नहीं बल्कि वहाँ रह रहे लोगों की सोच, शिक्षा, संस्कार और जिम्मेदारी से होती है।
0: बिल्कुल।
1: जागरूक युवा ही समृद्ध भारत की पहचान है, और वही विकसित, संतुलित और आत्मनिर्भर भारत का सबसे मजबूत आधार बनेंगे।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या आज हमारे देश के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुका है, लेकिन ये चुनौती अवसर में भी बदली जा सकती है यदि हमारे युवा जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे और जिम्मेदार बनेंगे। जनसंख्या नियंत्रण का अर्थ केवल लोगों की संख्या कम करना नहीं है श्रोताओं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
1: जी हाँ।
0: जब परिवार छोटा होगा, शिक्षा बेहतर होगी, स्वास्थ्य सुविधा सुलभ होगी और संसाधनों का उचित उपयोग होगा, तब देश का विकास और अधिक तेजी से होगा।
1: बिल्कुल।
0: युवा यदि स्वयं जिम्मेदारी निभाएंगे, समाज को जागरूक करेंगे, महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करेंगे और परिवार नियोजन के महत्व को समझेंगे तो भारत का भविष्य और अधिक उज्जवल बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, हम जागरूक नागरिक बने, जनसंख्या संतुलन का संदेश फैलाएं और एक समृद्ध, स्वस्थ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान जरूर दें।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी रही जनसंख्या वृद्धि के कारण और हमारे युवा साथियों की इसमें क्या भूमिका है इसको लेकर।
0: बिल्कुल।
1: अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवाएं।
0: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो भी बातें करी बढ़ती जनसंख्या और युवाओं की भूमिका को लेकर वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथ ही आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन, यानी कि सतत विकास की आधारशिला को लेकर। श्रोता साथियों, कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां परिवार के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जाए, लेकिन घर की आय, भोजन, पानी और जगह उतनी ही रहे। कुछ समय बाद वहां परेशानियां बढ़ने लगेगी, और यही स्थिति किसी देश, समाज और दुनिया की भी हो सकती है। हम देखते हैं अंजलि कि जनसंख्या मानव शक्ति है, लेकिन जब जनसंख्या की वृद्धि उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाती है तब विकास की गति धीमी पड़ने लगती है।
0: जी हाँ,
1: इसीलिए आज के सच्चा स्वराज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन पर। ये केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी नागरिकों का साझा दायित्व है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी बातें ढेर सारी होंगी कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय पर, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज बातें रहने वाली है जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन यानी कि सतत विकास की आधारशिला को लेकर।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन किसी भी राष्ट्र के सतत और समावेशी विकास का मूल आधार है। मानव सभ्यता की प्रगति संसाधनों के उचित उपयोग पर ही निर्भर करती है श्रोता साथियों, जबकि संसाधनों का उपयोग करने वाला प्रमुख तत्व जनसंख्या है।
0: बिल्कुल।
1: यदि जनसंख्या और संसाधनों के बीच उचित संतुलन बना रहे तो समाज में समृद्धि, स्थिरता और विकास संभव होता है। लेकिन जागृति जी, जब जनसंख्या वृद्धि की गति संसाधनों की उपलब्धता और विकास की गति से अधिक हो जाती है तब अनेक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं जन्म लेने लगती है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, सच्चा स्वराज केवल अधिकारों की बात नहीं करता बल्कि जिम्मेदारियों की भी बात करता है। जब नागरिक संसाधनों का सम्मान करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं तभी वास्तविक स्वराज की स्थापना होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, जैसे कि अक्सर बढ़ती जनसंख्या को समस्या के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और कुशल हो तो वही देश की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
1: बिल्कुल।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, हमारे लिए ये एक अवसर भी है। यदि युवाओं को अच्छी शिक्षा दी जाए, कौशल प्रशिक्षण दिए जाए, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो वे देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मानव संसाधन का विकास ही किसी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होता है।
1: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि जनसंख्या किसी देश की शक्ति भी है और चुनौती भी।
0: बिल्कुल।
1: यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस जनसंख्या को कितना शिक्षित, कुशल और जागरूक बनाया गया है। दूसरी ओर संसाधन वे संसाधन है जो मानव जीवन को चलाने और विकास को गति देने में सहायता करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसमें जल, भूमि, वन, खनिज, ऊर्जा, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर शामिल होते हैं। श्रोता साथियों, जब जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बना रहता है तब विकास का लाभ जो है वो समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन असंतुलन की स्थिति में जागृति जी, संसाधनों पर दबाव पड़ता है और जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। आज दुनिया के अनेक देशों के सामने बढ़ती जनसंख्या एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में खड़ी है। जनसंख्या वृद्धि के साथ भोजन, पानी, ऊर्जा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की मांग भी बढ़ रही है। यदि इन मांगों के अनुरूप संसाधनों का विकास नहीं हुआ तो हम देखते हैं कि संसाधनों की कमी महसूस होने लगती है।
0: बिल्कुल।
1: और यही कारण है कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखने में परिवार नियोजन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छोटा परिवार न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है बल्कि बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है।
1: बिल्कुल।
0: परिवार नियोजन का उद्देश्य केवल जनसंख्या नियंत्रण नहीं है बल्कि बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी है।
1: जी हाँ।
0: जागरूकता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कहा भी गया है कि छोटा परिवार सुख का आधार है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन केवल एक आर्थिक और सामाजिक मुद्दा नहीं है बल्कि मानवता के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। जहां विकास की शक्ति है और संसाधन का विकास आधार है तो दोनों के बीच संतुलन बनाए रखकर ही हम एक समृद्ध, सुरक्षित और सतत भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आज आवश्यकता है कि दूरदर्शी नीतियों और जन जागरूकता, जिम्मेदार नागरिकता और सामूहिक प्रयासों की। जब हम संसाधनों का सम्मान करेंगे और विकास को संतुलित दृष्टि से देखेंगे तभी सच्चे अर्थों में स्वावलंबी, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण संभव होगा।
0: बिल्कुल अंजलि, यही हम सतत विकास की आवश्यकता को लेकर हमारे श्रोता साथियों से बातचीत करें तो श्रोता साथियों, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना ही सतत विकास होता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम आज संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कम बचेगा। इसलिए विकास की योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और सामाजिक न्याय को शामिल करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: सतत विकास ही वो मार्ग है जो जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें चल रही हैं। ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं बात करें पर्यावरण की दृष्टि से किस तरीके से जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। तो श्रोता साथियों, बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग बढ़ता है। इससे जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती है। आज दुनिया के अनेक हिस्से अधिकतम गर्मी, सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों का समाधान तभी संभव है श्रोता साथियों, जब विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। तेजी से बढ़ता शहरीकरण भी जनसंख्या वृद्धि का एक परिणाम है जागृति जी। रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं।
1: जी हाँ।
0: इससे शहरों पर अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है, आवास, परिवहन, स्वच्छता और कई अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी महसूस होने लगती है। कई शहरों में झुग्गी बस्तियों का विस्तार इसी असंतुलन का परिणाम है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का विषय नहीं है, ये जिम्मेदार नागरिकता का भी प्रतीक है। जब नागरिक पानी बचाते हैं, बिजली बचाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, स्वच्छता बनाए रखते हैं और संसाधनों का सम्मान करते हैं, तब वे सच्चे स्वराज की भावना को मजबूत करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति यदि अपने स्तर पर छोटे छोटे प्रयास करे तो बड़ा परिवर्तन भी संभव है। संसाधनों का संरक्षण किसी एक संस्था या सरकार का कार्य नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: जी जी
1: श्रोताओं,

0: सतत विकास की अवधारणा भी इसी संतुलन पर आधारित है। सतत विकास का अर्थ वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय आवश्यक है।
1: जी हाँ।
0: जब विकास की योजनाएं संसाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है श्रोता साथियों, तब संतुलन और दीर्घकालिक प्रगति संभव हो पाती है। सच्चे स्वराज की भावना भी इसी विचार को मजबूत करती है कि विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक नागरिक को अपने संसाधनों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। पानी की बचत, बिजली का संयमित उपयोग, वृक्षारोपण, स्वच्छता और जिम्मेदार उपभोग जैसी छोटी छोटी आदतें बड़े परिवर्तन ला सकती हैं।
1: जी हाँ।
0: जब समाज के लोग स्वयं जागरूक होकर संसाधनों के संरक्षण में भाग लेते हैं, तब संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त हो पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि। तो आज की चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन केवल एक आर्थिक या पर्यावरणीय विषय नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य, हमारी जीवन शैली और आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
0: बिल्कुल।
1: जनसंख्या बढ़ना स्वाभाविक है श्रोताओं, लेकिन संसाधनों का सीमित होना भी एक सच्चाई है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम विकास की दौड़ में संसाधनों के संरक्षण को कभी न भूले। हमें ये याद रखना होगा कि प्रकृति ने हमें जल, जंगल, जमीन, हवा और खनिजों के रूप में अनमोल धरोहर सौंपी है। ये केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी इन पर उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। यदि हम आज लापरवाही करेंगे तो कल हमारी संतानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ जाएगी।
0: जी जी।
1: लेकिन यदि हम आज जिम्मेदारी दिखाएंगे तो आने वाला कल और अधिक सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन केवल एक आर्थिक और सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवता के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। जनसंख्या विकास की शक्ति है और संसाधन विकास का आधार। श्रोता साथियों, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखकर ही हम एक समृद्ध, सुरक्षित और सतत भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आवश्यकता है दूरदर्शी नीतियों, जन जागरूकता, जिम्मेदार नागरिकता और सामूहिक प्रयासों की। जब हम संसाधनों का सम्मान करेंगे और विकास को संतुलित दृष्टि से देखेंगे, तभी सच्चे अर्थों में स्वावलंबी, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण संभव हो पाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्चा स्वराज तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझे। जब हम पानी की एक एक बूंद बचाने का प्रयास करेंगे, जब हम बिजली का अनावश्यक उपयोग रोकेंगे, जब हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, जब हम परिवार और समाज में जागरूकता फैलाएंगे, तब हम केवल संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे, बल्कि एक मजबूत राष्ट्र की नींव भी रखेंगे।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, इतिहास गवाह है कि वे समाज ही आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपने संसाधनों का सम्मान किया, उनका संरक्षण किया और उनका न्यायपूर्ण उपयोग किया। आज हमारे सामने भी वही अवसर है। हमें तय करना है कि हम संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का रास्ता चुनेंगे या संरक्षण और संतुलन का मार्ग अपनाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब एक बात आपको कहना चाहेंगे कि हम जल की रक्षा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे और अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक जागरूक समाज का निर्माण करता है अंजलि, और एक जागरूक समाज ही सच्चे स्वराज की पहचान बनता है। इसलिए याद रखिए, विकास केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों, बड़े उद्योगों से नहीं मापा जा सकता। वास्तविक विकास तो वो है जिसमें हर व्यक्ति को पर्याप्त संसाधन मिले, प्रकृति सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां भी सम्मान पूर्वक जीवन जी सके।
0: जी हाँ।
1: यही संतुलन समृद्धि का आधार है, यही सतत विकास का मार्ग है और यही सच्चे स्वराज का सपना है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान पाए हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नो राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नु समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरा अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाइयों ने बोनो जई वरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ियो बोनो रिश्तो है। जे जंगल में हमसे हैं इन्होंने रक्षा करे हैं। तो आवो बोनों की भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल नु भविष्य सुरक्षित करा। बोनों की आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल हाँ ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे
1: अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

साथियों, शिकायतें जीवन को हल्का नहीं करती है, बल्कि मन को भारी कर देती है। जो हर परिस्थिति में केवल कमी ढूंढता है, वह खुशियों के बीच रहकर भी खुश नहीं रह पाता। जी हाँ दोस्तों, बारिशों से शिकायत होगी तो इंद्रधनुष नहीं दिखेगा, धूप से शिकायत होगी तो उजाला भी अच्छा नहीं लगेगा। जिंदगी बदलने से पहले दोस्तों, कभी शिकायत करने का तरीका बदल कर भी देखिए। जी हाँ, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोता साथियों, सपनों की उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम है जो जीवन की छोटी छोटी बातों में छिपे बड़े संदेशों को आपके सामने लाता है। आज हम एक ऐसे ही विषय पर आपसे बात करेंगे जो शायद हम सभी से जुड़ा है, लेकिन हम अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते। आज का विषय है, बिना शिकायत के एक दिन जीना कितना कठिन है। तो बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी होंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने गीत से पहले आज का विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं बिना शिकायत के एक दिन जीना कितना कठिन है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार सुनने पर ही विषय जो है वो आसान लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए कि क्या हम एक पूरा दिन बिना किसी शिकायत के बिता सकते हैं? बिजली चली जाए तो शिकायत, ट्रैफिक मिल जाए तो शिकायत, गर्मी हो तो शिकायत, बारिश हो तो शिकायत, इसी के साथ काम ज्यादा हो तो शिकायत, काम कम हो तो शिकायत, कभी लोगों से शिकायत, कभी किस्मत से तो कभी समय से तो कभी खुद से। ऐसा लगता है ना दोस्तों कि जैसे शिकायत करना हमारी आदत सी बन गई है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस आदत का असर केवल हमारे शब्दों पर ही नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारे पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए दोस्तों, शिकायतें तब पैदा होती हैं जब हमारी उम्मीदें और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाती। हम चाहते हैं बहुत सी बार कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता है। यही से असंतोष शुरू होने लगता है और असंतोष धीरे धीरे शिकायतों का रूप लेने लगता है। और किसी ने दोस्तों बहुत अच्छी बात कही है कि जहाँ स्वीकार करने की आदत कम होती है वहाँ शिकायतें ज्यादा होती है। अब आपके मन में भी दोस्तों एक सवाल आ रहा होगा ना कि क्या शिकायत करना गलत है? तो दोस्तों, हर शिकायत गलत नहीं होती है। यदि समाज में अन्याय हो, यदि किसी के साथ गलत व्यवहार हो, यदि किसी व्यवस्था में सुधार की जरूरत हो तो आवाज उठाना जरूरी है। लेकिन हर छोटी छोटी बात पर शिकायत करना, हर परिस्थिति में केवल कमी ढूंढना और हर व्यक्ति में केवल दोष देखना, यही आदत धीरे धीरे मन की शांति छीनने लगती है। तो दोस्तों, यही अब बात आती है कि शिकायत का सबसे बड़ा आखिरकार नुकसान क्या है। तो दोस्तों, बताना चाहूंगी कि जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है ना, वह धीरे धीरे अपने जीवन की अच्छी आदतों को देखना ही बंद कर देता है। उसे परिवार का प्यार दिखाई नहीं देता, दोस्तों का साथ महसूस नहीं होता, अपनी उपलब्धियां छोटी लगने लगती हैं और हर नई सुबह भी बोझ जैसे लगने लगती है। इसलिए शिकायत केवल शब्द नहीं होती, वे हमारी सोच का आईना होती है। इसलिए कहना चाहूंगी दोस्तों, शिकायतों की सूची जितनी लंबी होती है ना, खुशियों की सूची उतनी ही छोटी हो जाती है। इसलिए हर दिन में कुछ कमियां मत ढूंढिए, हर दिन हमारे लिए एक आशीर्वाद होता है। हम इसे कैसे देखते हैं ये हमारी सोच तय करती है। इसलिए दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आज सुबह उठकर आप क्या संकल्प ले सकते हैं। आप संकल्प लीजिए कि आज बिना किसी शिकायत के आप दिन बिताएंगे। देखिएगा दोस्तों कि कुछ ही घंटे में आपको महसूस होगा कि शिकायत करना कितना सहज है और ये हमारी आदत बन चुका है। कभी मौसम से, तो कभी मोबाइल की धीमी स्पीड से, तो कभी किसी की बात से, तो कभी अपने काम से, और यही एहसास इस विषय का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, जैसा कि बातें कार्यक्रम में मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है कि हम ऐसा कोई एक दिन है जिस दिन बिना शिकायत उस दिन को जी सकते हैं, तो बातें इस तरीके से मेरी कार्यक्रम में आपसे यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाने का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा आपके अपने साथी अंजलि पाराशर के साथ में कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।
1: सुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई,

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने गीत से पहले ढेर सारी बातों से आपको मैंने अवगत करवाया था, यही दोस्तों बात आती है कि बच्चे सुनने से ज्यादा बहुत सी बार देख कर सीखते हैं। यदि घर में हर समय शिकायत का माहौल रहेगा तो बच्चे भी वही भाषा सीखेंगे, लेकिन यदि वे देखेंगे कि कठिन परिस्थिति में भी परिवार समाधान खोजता है तो वे भी सकारात्मक बनेंगे। इसलिए आज बहुत से युवा यह कहते हैं कि मेरे पास अवसर नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे पास साधन कम है। हो सकता है कि कुछ बातें सही भी हो, लेकिन शिकायत करने से परिस्थितियां नहीं बदलती, परिवर्तन हमेशा प्रयास से ही आता है। इसलिए दोस्तों, शिकायत रास्ता नहीं बनाती बल्कि प्रयास रास्ता बनाते हैं। पुरानी पीढ़ी ने कम साधनों में भी जीवन जिया, कठिनाइयां थी, सुविधाएं कम थी, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में जीने की कला सीख ली थी। और यही अनुभव हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का पहला समाधान शिकायत नहीं, धैर्य और प्रयास भी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि यदि समाज शिकायत कम करे और समाधान ज्यादा खोजे तो क्या होगा? क्योंकि यदि हर व्यक्ति केवल शिकायत करने के बजाय एक छोटा सा समाधान खोजने लगे, तो एक अच्छी बात कहने लगे, एक व्यक्ति की मदद करने लगे, तो हमारा परिवार, मोहल्ला और समाज कितना बदल सकता है। समाज बदलने की शुरुआत बड़े भाषणों से नहीं, छोटी आदतों से होती है। हर रात सोने से पहले 3 शिकायतें लिखने के बजाय 3 ऐसी बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपका मन कमी नहीं, अच्छाई देखने लगेगा, और यही अभ्यास जीवन की दिशा बदल सकता है। तो श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि शिकायत करना आसान है, लेकिन स्वीकार करना और सुधार के लिए कदम उठाना साहस का काम है। जीवन में हर दिन कुछ न कुछ हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है। हर व्यक्ति हमारे अनुसार व्यवहार भी नहीं करेगा और हर परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं होगी। यदि हम हर छोटी बात पर शिकायत करते रहेंगे तो हम जीवन की उन अनगिनत खुशियों को खो देंगे जो चुपचाप हमारे आसपास मौजूद है। इसलिए आइए आज से एक छोटा सा संकल्प लें, शिकायत कम करेंगे, धन्यवाद ज्यादा देंगे, कमी कम देखेंगे, अच्छाई ज्यादा खोजेंगे, दोष कम गिनेंगे, समाधान ज्यादा ढूंढेंगे। क्योंकि जिस दिन हमारी सोच बदलती है, उसी दिन से हमारा जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कहना चाहूंगी कार्यक्रम के माध्यम से कि हर सुबह ये मत सोचिए आप कि आज क्या गलत होगा, बल्कि ये सोचिए कि आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि शिकायतों से भरा मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन कृतज्ञता से भरा मन छोटी सी खुशियों में भी मुस्कुराने का कारण ढूंढ लेता है। इसलिए जिंदगी आसान तब नहीं होती है जब समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि तब होती है जब हम हर परिस्थिति में मुस्कुराकर आगे बढ़ना सीख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि शिकायत करना हमारी परिस्थितियों को नहीं बदलता, बल्कि कई बार हमारी सोच को इतना घेर लेता है कि हमें अपने जीवन की अच्छाइयाँ दिखाई देना बंद हो जाती है। जब मन हर समय कमी, परेशानी और असंतोष पर ही केंद्रित रहता है, तब जीवन में मौजूद अवसर, रिश्ते, सीख, छोटी छोटी खुशियाँ भी अपना महत्व खोने लगती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ है या नहीं, बल्कि यह है कि हम उन कठिनाइयों को किस दृष्टि से देखते हैं। जीवन में हर व्यक्ति के सामने चुनौतियाँ आती है, कोई आर्थिक संघर्ष से गुजरता है, तो कोई स्वास्थ्य की समस्या से, तो कोई रिश्तों की उलझनों से, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने की कठिनाइयों से। यदि हर कठिनाई के सामने हम केवल शिकायत करना चुनेंगे तो हम अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा उसी में खर्च कर देंगे, लेकिन यदि हम हर परिस्थिति से कुछ सीखने और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो वही कठिनाइयां हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाने का माध्यम बन सकती है। इसलिए ये याद रखिए दोस्तों कि शिकायत का सबसे बड़ा नुकसान केवल हमें नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी होता है। जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें करता है, उसके आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे भारी और निराशाजनक हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य, आशा और सकारात्मक सोच बनाए रखता है, वो अपने परिवार, मित्रों और समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए दोस्तों, हमारा व्यवहार केवल हमारा नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों का भविष्य भी प्रभावित करता है। इसलिए
कभी कभी जीवन में हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता के अनुसार परिस्थितियाँ हमें मिलती है। उस समय शिकायत करने के बजाय यदि हम धैर्य, विश्वास और प्रयास का साथ पकड़ लें, तो समय के साथ वही अनुभव हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। आज जो कठिनाई हमें बोझ लग रही है, वही कल हमें अधिक समझदार, संवेदनशील और मजबूत इंसान बना सकती है। इसलिए दोस्तों, हम अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन करें। हर दिन यह देखने की आदत डालने की क्या कमी है, उससे पहले यह देखें कि क्या हमारे पास है, क्या कोई हमारा अपना हमारा इंतजार कर रहा है, क्या हम स्वस्थ हैं, क्या हमारे पास सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। यदि इन प्रश्नों के उत्तर हाँ है, तो हमारे पास मुस्कुराने के कई कारण पहले से मौजूद हैं। तो दोस्तों, शिकायत करने से समय बीत जाता है, लेकिन समाधान खोजने से जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए हर दिन हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक शिकायतों का और दूसरा संभावनाओं का। चुनाव हमारा होता है कि हम अपने मन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए ऐसा जीवन चुने हम जहाँ शिकायतें कम हो, कृतज्ञता अधिक हो, जहाँ निराशा कम हो, प्रयास अधिक हो, और जहाँ हर नया दिन एक नई उम्मीद, नई मुस्कान और नए विश्वास के साथ शुरू हो। क्योंकि जीवन उन लोगों के लिए सबसे सुंदर बनता है जो परिस्थितियों से हारने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ना जानते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे आज के कार्यक्रम की बातें। आशा करती हूँ कि सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों, मैं कार्यक्रम में आपको एक और अंतिम गीत सुनवाना चाहूंगी। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, फागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर, जो कि हर साल 11 जुलाई यानी आज के दिन मनाया जाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, इस दिन का उद्देश्य केवल बढ़ती जनसंख्या की चिंता करना नहीं, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार नियोजन, महिलाओं के अधिकार और सतत विकास के प्रति जागरूक करना भी है।
0: जी जी,
1: बढ़ती जनसंख्या तभी चुनौती बनती है श्रोता साथियों, जब संसाधन सीमित हो और उसका सही उपयोग न हो पाए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने ये बात तो सही कही। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन साथियों को करवाएं हम।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं अंजलि जी कि विश्व में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: और जनसंख्या जो है वो किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति भी होती है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यदि साथियों जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ, कुशल और रोजगार युक्त हो तो वह देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
1: बिल्कुल,
0: वही अगर यदि जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़े और उसके अनुरूप संसाधनों का विकास न हो तो गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, कुपोषण, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याएं होने लगती हैं। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि इन्हीं चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही प्रत्येक साल 11 जुलाई यानी कि आज के दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई थी। श्रोता साथियों, इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि जनसंख्या और विकास का गहरा संबंध है।
0: बिल्कुल,
1: यदि जनसंख्या के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी बढ़े तो वही जनसंख्या देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। बड़ी आबादी हमारे लिए अवसर भी है और चुनौती भी। यदि कशिश, युवाओं को अच्छी शिक्षा, कौशल और रोजगार मिले तो वे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन यदि संसाधनों का सही प्रबंधन न हो तो बेरोजगारी, गरीबी, प्रदूषण, आवास की कमी और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कई सारे प्रभाव हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव, बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अतिरिक्त बोझ, जल, भोजन, ऊर्जा की बढ़ती मांग, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां।
0: जी हाँ,
1: इनका समाधान करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि ये दिवस हमें ये याद दिलाता है कि जनसंख्या केवल संख्या नहीं बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा एक विषय है। और हमारा उद्देश्य केवल जनसंख्या को नियंत्रित करना नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अवसर उपलब्ध कराना भी है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जनसंख्या किसी भी राष्ट्र की शक्ति होती है। यदि देश के नागरिक अंजलि जी स्वस्थ, शिक्षित और कुशल होंगे तो आर्थिक विकास में वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और वहीं अगर हम देखें तो जनसंख्या से देश को कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि श्रम शक्ति बढ़ती है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने के साथ साथ नए विचार और नवाचार सामने आते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बाजार का विस्तार होता है साथियों, आर्थिक विकास को गति मिलती है, देश की रक्षा और सामाजिक विकास मजबूत होता है। साथ ही इसलिए केवल जनसंख्या अधिक होना समस्या नहीं है बल्कि उसका सही प्रबंधन होना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह संदेश देता है कि केवल जनसंख्या की संख्या नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। जब हर बच्चे को शिक्षा, हर परिवार को स्वास्थ्य सुविधा, हर युवा को रोजगार और हर महिला को अपने निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा तभी हमारा समाज वास्तव में समृद्ध होगा।
0: बिल्कुल,
1: हम सभी जिम्मेदार नागरिक बनकर जागरूकता फैलाएं और ऐसा भारत बनाने में योगदान दे श्रोता साथियों जहां बढ़ती जनसंख्या बोझ नहीं बल्कि विकास की शक्ति बने। विश्व जनसंख्या दिवस केवल एक तिथि नहीं है श्रोता साथियों बल्कि हमें यह सोचने का अवसर देता है कि बढ़ती जनसंख्या का हमारे जीवन, समाज, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: किसी भी देश की जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यह बात इस पर निर्भर करती है कि उस देश के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के कितने अवसर उपलब्ध हैं।
0: जी हाँ,
1: आज दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक आगे बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं और नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं। लेकिन दूसरी ओर जनसंख्या में लगातार वृद्धि के कारण पानी, भोजन, ऊर्जा, आवास और रोजगार जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। यदि संख्या वृद्धि के साथ संसाधनों का विकास समान गति से न हो तो गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बातें कर ही रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर,
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन अभी क्यों ना श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं और किस तरीके से जनसंख्या वृद्धि के लाभ भी हो सकते हैं और कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आ सकती है। श्रोता साथियों, भारत जैसे युवा देश के लिए जनसंख्या एक जनसंख्यिकी लाभ भी बन सकती है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिले कशिश, तो वही युवा देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यदि शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था पर्याप्त न हो तो यही स्थिति सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को बढ़ा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जनसंख्या का संबंध केवल लोगों की संख्या से नहीं बल्कि मातृ व शिशु स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन और जीवन की गुणवत्ता से भी है। जब महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार मिलता है तब परिवार भी स्वस्थ होता है और समाज भी अधिक सशक्त बनता है।
1: बिल्कुल।
0: ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कशिश कई परिवारों तक परिवार नियोजन, पोषण, सुरक्षित मातृत्व और स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाती।
1: जी।
0: ऐसे में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य विभाग और सामुदायिक रेडियो जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: सही जानकारी और खुला संवाद श्रोता साथियों लोगों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि बढ़ती जनसंख्या का असर पर्यावरण पर भी स्पष्ट दिखाई देता है।
1: बिल्कुल।
0: जंगलों की कटाई, भूजल का अत्यधिक दोहन, बढ़ता प्रदूषण, कचरे की समस्या और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां कहीं न कहीं संसाधनों पर बढ़ते दबाव से भी जुड़ी है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए सतत विकास के लिए आवश्यक है कि हम संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करें और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी सम्मान करें।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनसंख्या बढ़ने के कारण ढेर सारी समस्याएं हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अलग अलग साधन जो है वो इसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और हम भी हमारे सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के माध्यम से श्रोता साथियों को बता ही रहे हैं कि किस प्रकार से बढ़ती जनसंख्या जो है वो चुनौती का कह सकते हैं कि एक हिस्सा बन चुकी है। श्रोता साथियों, तेजी से बढ़ती जनसंख्या कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। रोजगार के अवसरों पर दबाव बढ़ता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है।
0: जी हाँ।
1: भोजन, पानी और ऊर्जा जैसे जो संसाधन हैं, उन पर बोझ भी बढ़ता है अंजलि जी। आवास की समस्याएं, जो कि झोपड़ियों का विस्तार हो जाता है, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति बढ़ती है और उसके साथ ही जंगलों की कटाई और जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: जिससे श्रोता साथियों, गरीबी और असमानता बढ़ने की संभावनाएं बनी रहती है। देखते हैं कि हमारी जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। श्रोता साथियों, अधिक लोगों के लिए अधिक भूमि, अधिक पानी, अधिक बिजली और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल।
1: और यदि संसाधनों का संतुलित उपयोग न किया जाए तो प्राकृतिक संसाधन तेजी से समाप्त होने लगते हैं। अंजलि जी
0: बिल्कुल। कशिश, विश्व जनसंख्या दिवस हमें केवल जनसंख्या नियंत्रण करने का संदेश नहीं देता बल्कि यह सिखाता है कि हर व्यक्ति का जीवन सम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसरों से भरपूर होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: किसी भी देश की असली समृद्धि उसकी आबादी की संख्या से नहीं बल्कि उसके नागरिकों की गुणवत्ता, जागरूकता और क्षमता से नापी जाती है।
1: जी हाँ।
0: इस विश्व जनसंख्या दिवस पर हम सभी को इस बात को मानना चाहिए कि हम अपने परिवार, समाज और गांव में शिक्षा को बढ़ावा देंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के

0: प्रति जागरूक रहेंगे और प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे। जब हर नागरिक जागरूक होगा, हर परिवार स्वस्थ होगा और हर युवा सक्षम होगा, तभी बढ़ती जनसंख्या देश के विकास की और सबसे बड़ी ताकत बन सकेगी और यही विश्व जनसंख्या दिवस का वास्तविक संदेश भी होगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर हमारे साथियों को हम बताएं परिवार नियोजन के महत्व के बारे में, तो परिवार नियोजन का मतलब केवल छोटा परिवार रखना नहीं होता साथियों, बल्कि माता पिता और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, उज्जवल भविष्य की योजना बनाना भी है।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, छोटा और जो स्वस्थ परिवार है वो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाते हैं, माताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बच्चों के पोषण और विकास में सहायता मिलती है, साथ ही समाज और राष्ट्र के विकास में भी भली भांति योगदान दिया जाता है।
0: जी जी
1: दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक विकास में महिलाओं की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब बेटियां पढ़ेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी, तभी सच्चा विकास होगा और अपने जीवन से जुड़े निर्णय वे स्वयं लेने में सक्षम हो पाएंगी।
0: जी हाँ कशिश, हम देखते हैं कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें या आधुनिक तकनीक नहीं है, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान और बेहतर जीवन मिल सके। यदि किसी देश की आबादी बढ़ रही है तो उसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषण, स्वच्छ पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तभी विकास संतुलित और टिकाऊ बन सकता है। श्रोता साथियों, यह भी समझना आवश्यक है कि जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों का सामना केवल सरकार के प्रयासों से ही संभव नहीं होने वाला है। इसमें समाज, परिवार, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, युवाओं और स्वयं नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल,
0: सही जानकारी, जागरूकता और जिम्मेदार निर्णय ही ऐसे बदलाव ला सकते हैं जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। जब परिवार छोटे लेकिन शिक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होंगे, तब समाज में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक संतुलन अपने आप दिखाई देगा। आज आवश्यकता किसी पर दबाव बनाने की नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने की है। परिवार नियोजन महिलाओं की शिक्षा, बालिकाओं का सशक्तिकरण, युवाओं के लिए कौशल विकास और बच्चों के बेहतर भविष्य में निवेश, ये सभी कदम मिलकर एक ऐसे राष्ट्र की नींव रखते हैं जहां हर नागरिक अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सके। जनसंख्या को समस्या नहीं बल्कि जिम्मेदारी और अवसर के रूप में देखने की सोच विकसित करनी होगी।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: और जैसा कि हम देखते हैं कि रेडियो के माध्यम से हम अपने किसानों, महिलाओं, युवा और बच्चों तक सरल भाषा में सही जानकारी पहुंचाते भी हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सलाह लोगों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। हम कहना चाहेंगे साथियों से कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वह शिक्षा को बढ़ावा दे,
0: जी जी,
1: बाल विवाह का विरोध करे, बेटी और बेटे को समान अवसर दे, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं, स्वच्छता और पोषण पर ध्यान दे, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण करें।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि दोस्तों एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना ही होगा।
0: बिल्कुल, तो कशिश इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। ये बातें निरंतर आगे यूं ही श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी,

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में हमारे विषय की बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों बातचीत का विषय काफी महत्वपूर्ण चल रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर हम बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इसी दिवस से जुड़े कुछ और बातें अगर करें हम अंजलि जी, तो हमारे साथियों से हम कहना चाहेंगे कि ये जो जनसंख्या वृद्धि जो एक समस्या बन चुकी है श्रोता साथियों, उसके लिए सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि हर समाज और हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वह शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, स्वच्छता बनाए रखे, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाए और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस हमें यह संदेश देता है कि केवल जनसंख्या बढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन जीना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए अंजलि जी कि हम शिक्षा के महत्व को समझेंगे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे और जिम्मेदार नागरिक भी बनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही छोटे स्वस्थ और खुशहाल परिवार के महत्व को समझेंगे, समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस केवल एक तिथि नहीं है बल्कि भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण है। जब जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बना रहेगा तभी समाज में समृद्धि, शांति और सतत विकास संभव होगा।
1: बिल्कुल कशिश, विश्व जनसंख्या दिवस पर हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने परिवार और समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार नागरिक का संदेश फैलाएंगे, ऐसा भारत बनाने में अपना योगदान देंगे जहां हर जन्म लेने वाले बच्चे को बेहतर भविष्य मिले, हर युवा को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिले और हर परिवार सम्मान, सुरक्षा और खुशहाली के साथ जीवन जी सके। यही एक सशक्त, समावेशी और विकसित भारत की पहचान होगी और यही विश्व जनसंख्या दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य भी होगा। श्रोता साथियों, ये कहना उचित होगा कि किसी भी देश का भविष्य केवल उसकी जनसंख्या की संख्या से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि वह अपने लोगों की क्षमताओं को कितना विकसित कर पाता है। हर बच्चा यदि शिक्षित हो, हर युवा को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले, हर महिला सुरक्षित, आत्मनिर्भर हो और हर बुजुर्ग को सम्मानजनक जीवन मिले, तो वही समाज जो है वो सच्चे अर्थों में समृद्ध कहलाता है। इसलिए हमारा लक्ष्य केवल जनसंख्या वृद्धि पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाना होनी चाहिए जहाँ पर प्रत्येक नागरिक अपने जीवन को पूरी क्षमता के अनुसार जी पाए।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। हम देख रहे हैं कशिश, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जल संकट, ऊर्जा की बढ़ती मांग और सीमित प्राकृतिक संसाधन। इन सभी मुद्दों पर हम देखते हैं कि कहीं न कहीं सभी लोग बातचीत करते हैं।
0: जी हाँ,
1: और ये जो मुद्दे हैं उनका संबंध कहीं न कहीं जनसंख्या और संसाधनों के संतुलित उपयोग से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें ऐसी जीवन शैली अपनानी होगी जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखे। पानी की एक एक बूंद बचाना, ऊर्जा का सोच समझकर उपयोग करना, पेड़ लगाना, कचरे का सही प्रबंधन करना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी व्यवहार अपनाना, ये सारी चीजों को समाधान के तौर पर देखे। जब हम इन सारी चीजों को समाधान के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं कशिश, तो हम देखेंगे कि कई सारी ऐसी चुनौतियां जो अभी के समय में हमारे सामने आ रही है उनका सामना हम कर पाएंगे।
0: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि किसी भी देश की जनसंख्या तभी उसकी शक्ति बनती है जब लोग स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और उत्पादक हो। इसलिए दोस्तों विकास का लक्ष्य केवल जनसंख्या की संख्या नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में जनसंख्या की भूमिका महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ जल, लैंगिक समानता, बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु संरक्षण जैसे सभी लक्ष्य सीधे सीधे जनसंख्या से ही जुड़े हुए हैं।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, आज कई देशों में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि कुछ देशों में युवाओं की संख्या ज्यादा है। हम देख सकते हैं कि हमारे देश के लिए ये अवसर है कि हम अपने युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार देकर आर्थिक प्रगति को गति दें।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, हमें ये समझना होगा कि जागरूक समाज ही मजबूत समाज बनाता है। जब लोग सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं तब परिवार स्वस्थ होते हैं, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है और पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव दिखाई देता है।
0: बिल्कुल
1: इसी दिशा में विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्वयंसेवी संगठन, पंचायत पंचायतें, सामुदायिक रेडियो जैसे माध्यम लोगों को सही जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों की जागरूकता ही वह शक्ति है जो किसी भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत करती है। इसलिए हमें केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर समाज बनाने में योगदान देना होगा। ऐसा समाज कशिश जहां संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हो, अवसरों का सम्मान वितरण हो, शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति तक पहुँचे और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक मिले। जब हम संख्या से अधिक गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा से अधिक सहयोग और उपभोग से अधिक जिम्मेदारी को महत्व देंगे, तभी हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे जो आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से संवेदनशील और पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित होगा। यही विश्व जनसंख्या दिवस का सबसे बड़ा सार्थक संदेश होगा।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर कौशल विकास के महत्व को लेकर हम बात करें तो दोस्तों केवल डिग्री ही पर्याप्त नहीं होती। युवाओं को तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल, कृषि नवाचार, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ना समय की मांग है। अंजलि जी, कौशल युवा ही आत्मनिर्भर भारत की नींव है। यदि गाँव में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, इंटरनेट और अन्य मूलभूत सुविधाएं मिल जाए तो शहरों की ओर अनावश्यक पलायन कम होगा, जिससे क्षेत्रीय विकास पर भी हम कह सकते हैं कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा और संतुलित वह रहेगा। आधुनिक तकनीक स्वास्थ्य, शिक्षा और कह सकते हैं कि प्रशासन को अधिक प्रभावी बना रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाएं विकास को एक नई दिशा दे रही है। साथियों
1: जी जी।
0: इनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना काफी जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान ही चुके हैं, यही कहना चाहेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस केवल हमें ये याद दिलाने के लिए नहीं कि दुनिया में लोगों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि ये समझाने के लिए भी है कि हर व्यक्ति अपने साथ एक नई संभावनाएं, नई जिम्मेदारी और नया भविष्य लेकर आता है। इसलिए हमारा उद्देश्य केवल जनसंख्या की गणना करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। जब किसी बच्चे को जन्म से ही अच्छा पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है, तभी वह आगे चलकर समाज और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे पाता है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि बदलते समय के साथ हमारी सोच और नीतियों में भी बदलाव आवश्यक है। आज आवश्यकता ऐसे समाज की है जहाँ विकास का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे, श्रोता साथियों, बल्कि गाँव, शहर, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग और दिव्यांग सभी तक समान रूप से पहुंचे। यदि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, तो बढ़ती जनसंख्या किसी बोझ के बजाय देश की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। इसलिए मानव संसाधन को विकसित करना ही सबसे बड़ा निवेश है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जनसंख्या और विकास का संबंध केवल वर्तमान से नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों से भी जुड़ा हुआ है। हमें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो भविष्य को सुरक्षित बनाए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, स्वच्छ जल का उचित उपयोग, कृषि में संतुलित तरीके अपनाना, पर्यावरण की रक्षा करना और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना, ये सभी कदम एक स्वस्थ, सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं। यदि आज कशिश हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए इस अवसर पर हमें ये भी समझना चाहिए कि जागरूक नागरिक ही किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और सही जानकारी, वैज्ञानिक सोच, सामाजिक संवेदनशीलता और जिम्मेदार व्यवहार मिलकर ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहाँ विकास और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन बना रहे। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि परिवार, विद्यालय, समुदाय, मीडिया और सरकार सभी की साझा जिम्मेदारी है कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जहां हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाए भी सही।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ समाज की शुरुआत स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे से ही होती है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित पोषण, सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु की उचित देखभाल से मृत्यु दर कम होती है।
0: बिल्कुल,
1: और समाज अधिक स्वस्थ बनता है। साथ ही किशोर अवस्था में जागरूकता भी जरूरी है, यानी कि किशोर अवस्था जो होता ही है वो जीवन का महत्वपूर्ण चरण है।
0: जी जी।
1: इस आयु में अंजलि जी, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा, करियर और जिम्मेदार नागरिकता के बारे में सही जानकारी देना भविष्य के लिए अत्यंत जरूरी है। हम कह सकते हैं कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना जरूरी है।
0: जी जी।
1: जैसे कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और वंचित समुदायों को समान अवसर देना समावेशी विकास की पहचान है। इसी के साथ हमारे साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि हर नागरिक का ये दायित्व है दोस्तों कि वह कानून का पालन करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, स्वच्छता बनाए रखने और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और समाज में सद्भावना बनाए रखने में सहयोग करे।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस पर हम केवल एक दिन का कार्यक्रम मनाकर अपने दायित्व की पूर्ति न समझे, बल्कि इसे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प दिवस बनाए। हम अपने परिवार, अपने गांव और अपने समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार नागरिक का संदेश फैलाएं। जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक होगा, हर परिवार सशक्त होगा, हर समुदाय विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनेगा, तब हमारा देश केवल जनसंख्या में ही नहीं, बल्कि मानव विकास, सामाजिक समरसता और सतत विकास के क्षेत्र में भी विश्व के लिए एक प्रेरणा का उदाहरण बनकर उभरेगा।
1: बिल्कुल,
0: यही विश्व जनसंख्या दिवस का सबसे सार्थक संदेश है और यही हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आज जो हम विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं, उसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि हम बहुत सारे सारी चीजों का ध्यान रखें।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि अभी के समय में हमारे सामने कई सारी चुनौतियां आ रही हैं और इन चुनौतियों का सामना करने का एकमात्र उपाय यह है कि हम सभी जागरूक नागरिक की तरह अपने जीवन को जिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी रही विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी बातें श्रोता साथियों को जरूर पसंद भी आई होंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को हमारे कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारे कार्यक्रम का पता। हमारे कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
1: जी हाँ,
0: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
1: बिल्कुल,
0: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
0: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सअप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागवत सिंह। फिल्म का नाम है तेरे बिना, गीत की बोल है कभी यादों में आऊँ। इस गीत की फरमाइश करता है आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सलार पहलगाम से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। इस गीत के अनुरोध करता है भागपत सिंह, जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीष देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी जी। इस गीत के अनुरोध करता है गंजद्वारा से उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमशुल कमर राही जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडपुर सिटी से। फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई, गीत के बोल हैं दिल में सनम की सूरत। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है जाकिर मुलानी, समया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलसाद मुलानी, नशीर मुलानी, बाबा बी मुलानी, बादशाहजी मुलानी और मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर समरराज आर्यन वर्मा, बीबी आरोही वर्मा, ऐशिका वर्मा, श्वेता जी वर्मा और अंजलि जी वर्मा। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इस गीत के अनुरोध करता है नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता यादव, आरती पूजा, प्रशांत यादव, सोनम यादव, बीबी सिया यादव। जलाना शोर से जुड़ रहे हैं सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओम यादव, सुभाष यादव, चंदन जी यादव, एकता जी यादव और संगीता जी यादव। इस गीत के अनुरोध करता है भागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। इसे भी चुनना चाह रहे नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नितेश शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दिल में सनम की सूरत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है कभी पत्थर के फूल। गीत के बोल हैं, कभी तू छलिया लगता है, कभी तू दीवाना लगता है। इस गीत की फरमाइश करता है गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोम, मानस जी राज। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे मलियाना सरधाना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। इस गीत की अनुरोध करता है भवानीनगर पेटर्न से, अरुण आरती, भाव साहेब, गंगा सागर, हर्षवर्धन, अशोक राशि परिजी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मलकापुर महाराष्ट्र से, शत्रुधन धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी धाड़ी, सप्रिल जी धाड़ी। इस गीत के अनुरोध करता है बिहार कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, कभी तू छलिया लगता है, कभी तू दीवाना लगता है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है मुकंदर का सिकंदर। गीत के बोल हैं, रोते हुए आते हैं सब। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है बड्डू लोहार पोपलगढ़, माया देवी शिवांश चंद्रकला पोपलगढ़, देवदास जी पोपलगढ़। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी, ईशान चीपा। इसे भी जुड़ना चाह रहे जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोज डिकेस्टो, पॉल डिकेस्टो, विलेज डिकेस्टो। इस गीत के अनुरोध करता है नई बस्ती घंचुजवारा से याशिन हाशमी, नवजा बेगम, तोसीफ हाशमी, तोइनूर जी, कलीम अंसारी जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे कोखा बलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजीत कुमार जंगेल, आयुष जंगेल, नंदिनी जी जंगेल। सुकरी कला से जुड़ रहे हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि जंगेल, ओशिका आदित्य और अंजलि जी जंगेल। कोपरगांव से जुड़ रहे हैं सुरेश मालोदी, वर्षा मालोदी, श्रद्धा मालोदी, मानसी जी मालोदी। इस गीत के अनुरोध करता है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ रहे हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहेजी मलिक। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को। गीत के बोल हैं, रोते हुए आते हैं सब। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, रोते हुए आते ही सब और रोते हुए जाते हैं। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आजू की है, भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है गुलाम। गीत के बोल हैं, आंखों से तूने ये क्या कह दिया। इस गीत की फरमाइश करता है हीरा मणि वर्मा, पारश मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे, नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे नारायण इगले, सोपान इगले, आशीष मेहकर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरशब्द, गुरकीरत राहुल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे मुरादाबाद से अदित कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य जी कसाना। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली प्रसाद वर्मा, अमित वर्मा। बोरखेड़ा पित्रामल से जुड़ रही विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहिटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुशजी मुणत। गाजियाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं शिषपाल जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजू भाई, युवराज सिंह और शिवांगी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों अभी हमने कुमार सोनू और अलका जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, आंखों से तूने ये क्या कह दिया। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दादरी गेट भवानी से। फिल्म का नाम है मेला। गीत के बोल ही मेला दिलों का आता है एक बार। इस गीत की फरमाइश करते हैं कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा और भी श्रोता साथी जुन्नाचार्य श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नाशी शेख, नाजिया नाशी, शाहिद शेख, अहमदनगर से जुन्नाचार्य हैं जुमेद मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाल जी मुजावर और जुमेब जी मुजावर। इसी बीच जुन्नाचार्य खंडाला से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय जी सेन इस गीत की अनुरोध करता है। झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया जी। इसी बीच जुन्नाचार्य खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नट्टू लक्ष मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रहे हैं पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविका जी सिक्का। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे मेला दिलों का आता है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है बेगाना, गीत के बोल हैं मतलब भी हैं लोग। इस गीत की फरमाइश करता है फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार चंदन। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं कलानौर से, नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंकजी शर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है जाकोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक, दीपक कुमार खटक। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से समियत मशरूम, साइना हसन, आक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंस्टू द्वारा सी। फिल्म का नाम है हीरो, गीत के बोल हैं तू मेरा जानू है। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान जी अंसारी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। जैन मंदिर वाली गली कुरावली सी, साइद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है पंजाब सी, केरव ज्योति रानी जी। पत्रोड से जुड़ना चाह रहे विजय अंबटकर, सुनीता अंबटकर, अक्षय अंबटकर, राधिका अंबटकर, ऋषिकेश जी अंबटकर। इसी बीच जुड़ना चाह रही कुंभार गली कुलगांव सी, पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तू मेरा जानू है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से सुबह 11 बजे से बहुत हमारा आपके साथ अच्छा चल रहा है। ढेरों फरमाइशों के गीतों के साथ हम मनोरंजन कर रहे हैं साथियों। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है नवाशहर से। फिल्म का नाम है बताना चाहूंगी। गीत के बोल है श्रोता साथियों इलू इलू, फिल्म का नाम है सौदागर। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में सुरेंद्र सानू, अनिता सांधु, रोहित सांधु, रितेश, शिक्षा सांधु, प्रतीक्षा सांधु और मेक्स जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे, शिला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। गंजू द्वारा से हैं शमशुल कमर राय, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान अंसाली जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से। आपको बताना चाहूंगी श्रोता साथियों अनारगली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, सिडबी गवैया, जयपाल यादव, भाई सुच्चा पाठक जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं इलू इलू।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, उस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। फिल्म का नाम है बताना चाहूँगी आपको। श्रोता साथियों, अलग अलग गीत के बोल हैं। कभी बेकसी ने मारा, इस गीत को आवाज़ दी किशोर कुमार जी ने, और फरमाइशकर्ता जुड़ रहे दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, सुभाष योगी जी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डप्पू जी। लोड़मी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं। कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी जुड़ना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्सोहिनी, मोहनजी, बलवीर सिंह जी। नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थाटी, दीता कुमारी थांडी, प्रियांश प्रशांत थांडी, प्रियंका वामिका थांडी जी और वाणी थांडी जी। बुलढाणा महाराष्ट्र से हैं भगवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे पाटिल, दादा देठे पाटिल, सैनिका देठे पाटिल। नादुरा से हैं शिवाजी उंगले, राहुल उंगले। और भी श्रोता साथी, राजकोट से हैं मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, प्रयागराज भट्ट, जस्मीन भट्ट जी। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से तो ताजमहल अंसारी, गुलाम शाबिर आई, मेहराज जहाँ। आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे, पवन जरिया, संजय डाबीराव जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, कभी बेकसी ने मारा।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, कभी बेकशी ने मारा कभी बेबसी ने मारा, इसी गीत के बाद दोस्तों फिर से बढ़ते हैं हमारे श्रोता साथियों की अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, बताना चाहूँगी, झारखंड से। फिल्म का नाम है परदेसी, गीत के बोल हैं देखो मुझे देखो क्या हुआ है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, अब्बास आलम जी, अमजद अली लाडली, निशा और सभी मित्रगण जुड़ रहे हैं। मॉडल टाउन करनाल से हैं सुदन रतन, संधि गुलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इश्पित शर्मा जी। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं, चुकनटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सैद अब्बासी, निगहत प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं, जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, हीरामन शेंडे, प्रेम प्रसिद्धि, प्रतिभा गुणाने जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है।
1: पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है,

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत आया है दोस्तों, बताना चाहूंगी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। गीत के बोल हैं एक राधा एक मीरा। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं हिमकेश्वर साहू, कर्ण राहुल साहू, चंपा साहू जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से, रुपेश सिंह, महेश प्रिगेश, प्रीति।

सत्संगी पूरा संगी परिवार। इसी बीच श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कंश चौहान जी। पोटा कला दुर्ग से है संजय साहू, श्वेता साहू, शांग साहू, सीमा साहू। जजर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से है श्याम कीटे, वंदना कीटे, भाविक कीटे, साविका कीटे। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इरकास, नरगिस खातून जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं एक राधा एक मीरा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता, उस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की। और अगली फरमाइश हमारे बीच आई है डाबके रोड अकोला से। फिल्म का नाम है मैंने भी प्यार किया, गीत के बोल हैं कबूतर जान। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमारगढ़ मंदुरकर, हिंगोली महाराष्ट्र से हैं। शाजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के। बरका खाना से हैं अफजाल तान, सैन सुल्ताना, तसु नसी, निफिल माहली और साहनी जी। महाराष्ट्र से हैं नंद किशोर कटे, संगीता कटे, साक्षी कटे, जयश्री मेदरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास अरवाल, धनंजय टोहल, बीपी कुलथे जी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तनवीर बोट, अंकित कांगड़ा जी। नरसिंहगढ़ से जुड़ना चाह रहे राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं कबूतर जा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

कानपुर से सुजाता और पंकज चौरसिया जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त, चन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। बांसवाड़ा से जुड़ना चाह रहे हैं अशोक गुप्ता जी और बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा जी, वेदई जोशी, अंशिका जोशी, मनीष वर्मा, रेहान खान, अंकिता जोशी, पायल जोशी खंडवा मदेश से हैं। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं वो लम्हे वो बातें। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और आपको बताना चाहूँगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। साथियों आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन वागर रेडियो 90.8 FM, जहां हर लम्हा है खास और हर कार्यक्रम में है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। संध्याकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 5 बजे भक्ति और श्रद्धा के साथ में। 5:30 पर शुरू होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज। युवाओं की आवाज कार्यक्रम में जहां युवा सोच, जोश और बदलाव की बातें होंगी सिर्फ आपके लिए, और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं और महक सोनी। शाम 6 बजे आप सुनिए सच्चा बचपन, मासूमियत कहानी और सीख से भरी प्यारी सी घड़ी। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर और अंजलि पाराशर। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे आजादी के सही मायने और जिम्मेदारियों की बातें। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बहनों की कहानियाँ, उनकी प्रेरणा के बारे में जान पाएंगे। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है नई पुरानी गजलें। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो साथियों, ये थी हमारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: आज के सुविचार।
1: गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंभ प्रेम से होता है, स्वयं से प्रेम। परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक। परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके
2: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है
0: होवे भयन बोनू आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है
0: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
2: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित जो चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करे भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी या दस्त में कमी सांस फूलना इत्यादि एनीमिया के लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर अपने नजदीकी राज्य स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया की निःशुल्क जांच कराएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। आंगनबाड़ी केंद्रों एवं राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया उपचार की IFA गोलियां निःशुल्क उपलब्ध हैं।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिरी कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है बढ़ती जनसंख्या और युवाओं की भूमिका को लेकर। श्रोता साथियों, जनसंख्या किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकती है और सबसे बड़ी चुनौती भी हो सकती है। यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ, कुशल और जागरूक हो तो वो देश के विकास का आधार बनती है कशिश। लेकिन यदि जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाए और संसाधनों के अनुसार उसका संतुलन न बन पाए तो यही जनसंख्या गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। हमारे देश की बड़ी आबादी में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है।
0: जी हाँ।
1: और यही कारण है कि बढ़ती जनसंख्या की चुनौती का समाधान भी युवाओं के हाथों में ही है।
0: बिल्कुल,
1: युवा यदि जागरूक बनेंगे और समाज को जागरूक करेंगे तो इस समस्या का प्रभावी समाधान संभव है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें आगे कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना कार्यक्रम का दस्तूर है तो शुरुआत में पहले सुनते हैं इस गीत को।
1: जी हाँ,
0: तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बढ़ती जनसंख्या और युवाओं की भूमिका को लेकर। जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले बताया था कि भारत दुनिया की सबसे युवा देशों में से एक है।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ की सबसे बड़ी आबादी युवा आबादी है। लेकिन दोस्तों, यही ताकत तब चुनौती बन जाती है जब जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है, उसके अनुरूप संसाधनों का विकास नहीं हो पाता। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या आज केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक विकास से जुड़ा एक गंभीर विषय बन चुका है। जागृति जी,
1: बिल्कुल।
0: वैसे तो जनसंख्या बढ़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है साथियों, लेकिन जब इसकी गति इतनी तेज हो जाती है कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ने लगे, तब ये चिंता का विषय बन जाता है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे युवा साथियों की होती है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि आज के युवा ही कल का नागरिक, अभिभावक, शिक्षक, इंजीनियर, किसान और समाज के मार्गदर्शक बनेंगे। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण होते हैं। हम देखते हैं कि अशिक्षा, जागरूकता की कमी, बाल विवाह, परिवार नियोजन की जानकारी का अभाव तथा पुरानी सामाजिक धारणाएं बहुत सारे कारणों में शामिल होती है।
0: बिल्कुल।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग अधिक बच्चों को परिवार की ताकत मानते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अधिक बच्चे भविष्य में परिवार का सहारा बनेंगे। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच भी इस समस्या को बढ़ाती है। इसके अलावा श्रोताओं, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की कमी भी जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। जहां महिलाएं शिक्षित होती है, आत्मनिर्भर होती है, वहाँ परिवार का आकार सामान्यतः छोटा और संतुलित होता है।
0: बिल्कुल।
1: कहा गया है कशिश की शिक्षा का अगर दीप हम जलाएंगे तो जनसंख्या संतुलन अपने आप कम होती जाएगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अगर बात करें तो हम देखते हैं श्रोता साथियों कि बढ़ती जनसंख्या का मतलब किसी देश या क्षेत्र में लोगों की संख्या लगातार इतनी तेजी से बढ़ना है कि संसाधनों की कमी हो जाए।
1: बिल्कुल।
0: यदि जनसंख्या के साथ साथ श्रोता साथियों रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, सड़कें और कह सकते हैं कि उद्योग भी गति से बढ़ने लगे तो समस्या कम हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब जनसंख्या विकास में अधिक तेजी से बढ़ती जाए तब अनेक समस्या जन्म लेती है। जागृति जी, आपने जैसा कि बताया कि बढ़ती जनसंख्या के ढेर सारे कारण हो सकते हैं, तो ऐसे में श्रोता साथियों हमारे सामने ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न होती है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि बेरोजगारी, यानी कि जब नौकरी के अवसर कम हो और नौकरी चाहने वाले अधिक होते हैं जागृति जी, तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों की संख्या बढ़ने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रभावित होती है।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे रोजगार के क्षेत्र में दिखाई देता है। हर वर्ष लाखों युवा नौकरी की तलाश में श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं, लेकिन रोजगार के अवसर उसी गति से नहीं बढ़ पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी और आर्थिक असुरक्षा बढ़ती जाती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण शिक्षा व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना बहुत कठिन हो जाता है। कशिश, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका अधिक असर पड़ता है। अस्पतालों में भीड़ हो जाती है, संसाधनों की कमी महसूस होने लगती है, गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करना और कठिन हो जाता है। इसके अलावा श्रोता साथियों, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ने से पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती है।
0: बिल्कुल।
1: जंगलों की कटाई होती है, जल संकट होता है, प्रदूषण और भूमि का अत्यधिक उपयोग भविष्य के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहा होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बढ़ती जनसंख्या हमेशा समस्या है?
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों नहीं, यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ, कुशल और रोजगार से जुड़ी हुई होगी तो वही जनसंख्या देश की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए लक्ष्य केवल जनसंख्या को नियंत्रित करना नहीं है जागृति जी, बल्कि मानव संसाधन को सक्षम बनाना भी है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं बढ़ती जनसंख्या और युवाओं की भूमिका को लेकर, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी बढ़ती जनसंख्या और युवाओं की भूमिका को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, भारत को युवा देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की शक्ति भी है। इनमें नई सोच होती है, ऊर्जा होती है, उत्साह और परिवर्तन लाने की क्षमता भी होती है।
1: बिल्कुल।
0: आज का युवा शिक्षित है, तकनीक से जुड़ा हुआ है और समाज में बदलाव लाने की शक्ति भी रखता है। अगर युवा जनसंख्या संबंधी मुद्दों को समझेंगे और समाज में जागरूकता फैलाएंगे कशिश, तो बड़ी से बड़ी सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है।
1: जी बिल्कुल।
0: युवा अपने परिवार, मित्रों, समुदाय के बीच सही जानकारी पहुंचाकर लोगों की सोच बदल सकते हैं। वे ये समझा सकते हैं कि छोटा परिवार ही खुशहाल और सुरक्षित भविष्य की कुंजी है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ हमारे युवा साथी शिक्षा को भी बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: बिल्कुल।
1: युवा स्वयं शिक्षा प्राप्त करें और दूसरों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करें। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देना बहुत जरूरी है जागृति जी, क्योंकि एक शिक्षित लड़की आगे चलकर एक जागरूक माँ और जिम्मेदार नागरिक बनती है।
0: बिल्कुल।
1: यदि युवा अपने आसपास ऐसे बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करे जो आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।
0: जी हाँ।
1: साथ ही सही उम्र में विवाह का संदेश देना भी जरूरी है। युवाओं को स्वयं भी कम उम्र में विवाह करने से बचना चाहिए जागृति जी। समाज में भी कानूनी और उचित आयु में विवाह करने का संदेश उन्हें देना चाहिए। उन्हें ये संदेश फैलाना चाहिए कि पहले शिक्षा, फिर रोजगार और उसके बाद जिम्मेदारी के साथ परिवार की शुरुआत।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, ये सोच समाज में स्थापित करने में युवाओं की भूमिका बड़ी हो सकती है, क्योंकि इससे परिवार बेहतर योजना के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और जनसंख्या वृद्धि की गति भी संतुलित रहेगी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें समाज के प्रत्येक नागरिकों की भागीदारी जरूरी है, विशेषकर हम युवाओं की। युवा स्वयं शिक्षित बनेंगे और परिवार नियोजन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या संतुलन के विषय में सही जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद वे अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सोशल मीडिया आज युवाओं के हाथ में एक प्रभावी माध्यम है। युवा इसके माध्यम से जागरूकता अभियान चला सकते हैं, जानकारी को साझा कर सकते हैं और लोगों को छोटे परिवार के लाभ समझा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हम युवाओं की सक्रिय भागीदारी जनसंख्या संबंधी जागरूकता को बढ़ा सकती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि युवा साथी केवल देश का भविष्य नहीं है बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी है।
0: बिल्कुल।
1: यदि वे शिक्षा, जागरूकता, जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बढ़ती जनसंख्या जैसी चुनौती भी एक अवसर में बदल सकती है। साथियों,
0: जी हाँ,
1: कहने का मतलब यही है कि जब युवा बदलेंगे तब समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तभी भारत संतुलित, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के बीच युवाओं के लिए केवल नौकरी की तलाश पर्याप्त नहीं है, उन्हें कौशल विकास पर भी ध्यान देना होगा।
1: बिल्कुल।
0: यदि युवा नए कौशल सीखेंगे, स्वरोजगार को अपनाएंगे और उद्यमिता की ओर बढ़ेंगे, तो वे स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। आत्मनिर्भर युवा देश की आर्थिक शक्ति को मजबूत करते हैं और जनसंख्या को बोझ बनने के बजाय संसाधन में बदल सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि सतत विकास का अर्थ है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना। बढ़ती जनसंख्या इस लक्ष्य को चुनौती देती है। यदि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित नहीं होगी कशिश, तो जल, भूमि, ऊर्जा और खाद्य संसाधनों पर भी दबाव बढ़ेगा। इसीलिए युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, जल बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आदत अपनानी होगी।
1: बिल्कुल।
0: युवाओं की छोटी छोटी पहले बड़ी बड़े बदलाव ला सकती है श्रोताओं।
1: बिल्कुल।
0: जागरूक नागरिक बनकर वे सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, तो ऐसे में हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना है कि हम केवल जनसंख्या बढ़ाने वाले नागरिक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। साथियों, क्योंकि किसी भी देश की असली शक्ति उसकी आबादी की संख्या नहीं बल्कि वहाँ रह रहे लोगों की सोच, शिक्षा, संस्कार और जिम्मेदारी से होती है।
0: बिल्कुल।
1: जागरूक युवा ही समृद्ध भारत की पहचान है, और वही विकसित, संतुलित और आत्मनिर्भर भारत का सबसे मजबूत आधार बनेंगे।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या आज हमारे देश के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुका है, लेकिन ये चुनौती अवसर में भी बदली जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हमारे युवा जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे और जिम्मेदार बनेंगे। जनसंख्या नियंत्रण का अर्थ केवल लोगों की संख्या कम करना नहीं है श्रोताओं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
1: जी हाँ।
0: जब परिवार छोटा होगा, शिक्षा बेहतर होगी, स्वास्थ्य सुविधा सुलभ होगी और संसाधनों का उचित उपयोग होगा, तब देश का विकास और अधिक तेजी से होगा।
1: बिल्कुल।
0: युवा यदि स्वयं जिम्मेदारी निभाएंगे, समाज को जागरूक करेंगे, महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करेंगे और परिवार नियोजन के महत्व को समझेंगे तो भारत का भविष्य और अधिक उज्जवल बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, हम जागरूक नागरिक बने, जनसंख्या संतुलन का संदेश फैलाएं और एक समृद्ध, स्वस्थ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान जरूर दें।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी रही जनसंख्या वृद्धि के कारण और हमारे युवा साथियों की इसमें क्या भूमिका है इसको लेकर।
0: बिल्कुल।
1: अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवाएं।
0: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो भी बातें करी बढ़ती जनसंख्या और युवाओं की भूमिका को लेकर वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथ ही आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अक्सर माता पिता छोटी सी आदत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं
0: जी,
1: लेकिन यदि समय रहते

0: इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये बच्चे के स्वास्थ्य और विकास पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आज का विषय है कशिश हमारा कि बच्चों में पेंसिल, रबड़ और अन्य अखाद्य वस्तुएं जो होती हैं, वो खाने की आदत के क्या कारण हैं, क्या नुकसान है और समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हम देखते हैं कि कई माता पिता ने देखा होगा कि उनका बच्चा पढ़ाई करते करते पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाता रहता है, रबड़ को काटता है, चोक, मिट्टी, कागज और अन्य ऐसी चीजें मुंह में डाल लेता है जो खाने के लिए नहीं होती। शुरुआत में यह केवल खेल या जिज्ञासा लग सकती है, लेकिन यह आदत बार बार और लंबे समय तक बनी रहे तो इसे गंभीरता से समझने की आवश्यक है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हर आदत के पीछे श्रोता साथियों कोई न कोई कारण होता है, इसलिए केवल डांटना या मारना समाधान नहीं है। हमें यह जानना होगा कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, इसके शरीर और मन की क्या जरूरत है और परिवार उसकी कैसे मदद कर सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना दस्तूर है कार्यक्रम का,
0: बिल्कुल,
1: तो इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बच्चों में पेंसिल, रबड़ या अन्य अखाद्य वस्तुओं खाने की आदत को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, अगर बात करें कि क्या ये केवल शरारत होती है या कोई संकेत, तो हम देखते हैं कि बचपन खोज और जिज्ञासा का समय होता है।
1: जी हाँ।
0: छोटे बच्चे अपने आसपास की चीजों को छूकर, देखकर और कई बार मुंह में डालकर पहचानने की कोशिश करते हैं। साथियों, बहुत छोटे बच्चों में ये सामान्य व्यवहार हो सकता है, लेकिन यदि स्कूल जाने की उम्र के बाद भी बच्चा बार बार पेंसिल, रबड़, मिट्टी, चोक या फिर कागज जैसे अखाद्य चीजें खाने लगे, तो इसे केवल शरारत मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए माता पिता को। कई बार यह शरीर या मन से जुड़ी किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि अगर बात करें तो इस आदत के पीछे ढेर सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो दोस्तों पोषण की कमी है। कई बार शरीर में आयरन, जिंक या अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है।
1: बिल्कुल।
0: जिससे बच्चों को ऐसी चीजें खाने की इच्छा बढ़ सकती है। इसलिए यदि ये आदत बार बार दिखाई दे श्रोता साथियों, तो चिकित्सक से सलाह लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, अब यही बात करें दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण है तनाव और चिंता। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे घबराहट, अकेलेपन या पढ़ाई के दबाव में पेंसिल चबाने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये उनके लिए तनाव कम करने का एक तरीका बन जाता है। इसी के साथ खाली समय, परेशान होना, खेलने के लिए दोस्त नहीं मिल पाना, ऐसे में भी बच्चे जो है ऐसी गतिविधियां कर देते हैं।
0: जी जी।
1: यदि बच्चा किसी रचनात्मक गतिविधि के लंबे समय तक बैठा रहता है, तो वह अनजाने में पेंसिल और रबर चबाने लगता है। कुछ बच्चे दूसरों की नकल करके भी ये आदत अपना लेते हैं। यदि स्कूल या घर में कोई दूसरा बच्चा ऐसा करता है, तो वे भी उसे दोहराने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, कई लोग सोचते हैं कि पेंसिल या रबर थोड़ा सा चबा लेने से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन यह आदत धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है। रबर और पेंसिल खाने के लिए नहीं बने होते, इसमें ऐसे पदार्थ होते हैं श्रोता साथियों, जो शरीर के लिए सुरक्षित नहीं है। इन्हें निगलने से पेट दर्द, कब्ज, उल्टी और पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कशिश,
0: बिल्कुल।
1: बार बार पेंसिल चबाने से दांतों पर भी बुरा असर पड़ सकता है, दांत घिस सकते हैं और मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। यदि बच्चा मिट्टी और अन्य गंदी चीजें मुंह में डालता है, तो इससे शरीर में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इस आदत का कारण पोषण की कमी है और समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी। साथ ही अगर बात करें अब यहाँ पर कि माता पिता क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो बच्चे को डांटने या शर्मिंदा करने से आपको बचना है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हर बार गुस्सा करेंगे तो बच्चा इस आदत को छिपाने लगेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। आप श्रोता साथियों, बच्चों से प्यार से बात करें, जानने की कोशिश करें कि वह ऐसा कब और क्यों करता है। क्या वह पढ़ाई के समय ऐसा करता है, क्या वह तनाव में है या क्या वह बोर हो रहा है साथियों। उसके भोजन पर आप ध्यान दें, रोजाना संतुलित आहार दे खाने के लिए, जिसमें हरी सब्जियां हो, दालें हो, मौसमी फल हो, दूध, दही और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल हो।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, यदि आदत लंबे समय तक बच्चों में बनी रहती है, तो माता पिता को बाल रोग विशेषज्ञ से भी सलाह लेनी चाहिए।
1: जी जी।
0: या फिर आवश्यकता होने पर डॉक्टर से पोषण संबंधित जांच की सलाह भी वे ले सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। ये बातें आगे और भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।
2: चिटकी टक टक चिक टक, चिटकी टक टक चिक टक, चिटकी टक

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश, गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से रबर, पेंसिल या कोई अन्य अखाद्य पदार्थ बच्चों में खाने की आदत है तो वो किस तरीके से नुकसानदेह हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: यही श्रोता साथियों, बच्चों को व्यस्त और रचनात्मक गतिविधियों में हमें शामिल करने की जरूरत है। चित्रकारी, कहानी पढ़ना, ब्लॉक्स खेलना, संगीत, खेलकूद, बागवानी जैसी गतिविधियां उनका ध्यान दूसरी ओर ले जाती है। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में छोटे छोटे विराम दे ताकि बच्चा तनाव महसूस न करे।
1: बिल्कुल।
0: यदि बच्चा कुछ दिनों तक पेंसिल या रबर मुंह में न डाले तो उसकी प्रशंसा करें। सकारात्मक प्रोत्साहन कई बार डांट से अधिक प्रभावी होता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, शिक्षकों को भी इस आदत पर ध्यान देना चाहिए। यदि किसी बच्चे में यह समस्या दिखाई दे तो उसे पूरी कक्षा के सामने डांटना या मजाक बनाना उचित नहीं है। शिक्षक अभिभावकों से बात करके मिलकर समाधान खोज सकते हैं। यदि आवश्यकता लगे तो बच्चों को स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह भी दी जा सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो दोस्तों, बच्चों की हर आदत के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, इसलिए केवल व्यवहार को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: पेंसिल, रबर, मिट्टी या फिर अखाद्य वस्तुएं खाने की आदत को छोटी शरारत समझकर नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। अंजलि जी, ये बच्चे के शरीर को किसी कमी, मानसिक तनाव या किसी अनावश्यकता का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में एक जागरूक परिवार वही है जो बच्चों के इस व्यवहार को ध्यान से देखे, उसे समझे, उसे समय रहते सही कदम उठाए, प्यार, धैर्य, संतुलित भोजन, खुला संवाद और आवश्यक होने पर चिकित्सीय सलाह। श्रोता साथियों, ये सभी मिलकर इस आदत को दूर करने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए कि बच्चे को डांटने से आदत छिप सकती है, लेकिन समझने और सही मार्गदर्शन से आदत बदली जा सकती है। ऐसे में हमें बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, सही आदतें और ऐसा वातावरण देना है जहाँ वे निडर होकर सीख सके, आगे बढ़ सके और स्वस्थ जीवन की ओर देख सके। अंजलि जी,
0: बिल्कुल कशिश, हम कह सकते हैं कि बच्चों का व्यवहार हमें हमेशा कुछ न कुछ संदेश देता है। कई बार वे शब्दों में अपनी परेशानी बता पाते हैं, इसलिए उनकी आदतें ही उनके मन और शरीर की स्थिति को व्यक्त करती हैं।
1: बिल्कुल।
0: पेंसिल, रबर, मिट्टी और अन्य खाद्य वस्तुएं बार बार मुंह में डालना भी ऐसी ही एक आदत है जिसे न तो हल्के में लेना चाहिए और न ही इसे बच्चे की जिद या शरारत मानकर नजरअंदाज करना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: हर बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है, इसलिए किसी एक उपाय को सभी बच्चों पर लागू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। यदि इसके पीछे पोषण की कमी है तो संतुलित भोजन और चिकित्सीय सलाह जरूरी है। यदि तनाव, अकेलापन और भावनात्मक असुरक्षा है तो उसे परिवार के प्यार, संवाद और भरोसे की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल।
0: सही कारण पहचान कर ही सही दिशा में समाधान मिल सकता है। श्रोता साथियों, माता पिता और शिक्षकों को यह याद रखना चाहिए कि बच्चे की आदत बदलने में समय लगता है। केवल एक दो दिन समझाने से बदलाव की उम्मीद करना उचित नहीं है। धैर्य, निरंतर प्रोत्साहन और सकारात्मक वातावरण ही बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करते हैं।
1: जी हाँ।
0: जब बच्चा ये महसूस करता है कि उनके अपने लोग उसे समझते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाते और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं, तब वह स्वयं भी बदलने के लिए तैयार होने लगता है।
1: बिल्कुल साथियों, हम कह सकते हैं कि हमें अपने बच्चों की छोटी छोटी आदतों पर केवल प्रतिक्रिया नहीं देनी है बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को समझने की कोशिश करनी है।
0: जी जी।
1: क्योंकि दोस्तों, जागरूक अभिभावक वही है जो समस्या देखने पर केवल डांटना नहीं बल्कि समाधान की दिशा में कदम भी बढ़ाते हैं। आज हमारी थोड़ी सी सजगता, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा ज्यादा समय बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मविश्वासी जीवन की ओर ले जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: याद रखिए साथियों, बच्चों की अच्छी आदतें डर से नहीं बल्कि विश्वास, समझ, स्नेह और सही मार्गदर्शन से विकसित होती है। जब परिवार बच्चों के मन को पढ़ना सीख जाते हैं तब उसका भविष्य भी अधिक स्वस्थ, खुशहाल और उज्जवल बन जाता है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें रही है और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को।
1: नमस्कार।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बना वंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है। सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके। शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
2: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग अपना ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भाइयों बोनू आ लक्षण अपने ने अपने मई देखाए तो अपने ने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया की निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
2: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले अपना ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: કિસાન ભાઈ બનુ ગીત તો આયશું પૂરું ને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણીમાન સ્વાગત કરા હા અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે અમે ગીત કે પહેલે આપને વિશે બતાડી દીધું હતું કે આજે આપણે વાત કરવા વાળા હા કે સબ્જીની બહુપૂરક ખેતી આપણે હરતે કરી શક તો કિસાન ભાઈ બહેનો અણા વિશે માટે જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે સ્ટુડિયો પધારે તકે હે શ્રીમાન પ્રમોદજી રોકડિયા સાહેબ તો સૌથી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત ને મોરે કરા આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: વાગડ રેડિયો કે સભી શ્રોતાગણ આપકો સભી કો બહોત બહોત નમસ્કાર
0: જૈસા કે સર હમ સભી જાણતે હૈ કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો ખેતી બહોત અચ્છી તરીકે સે કરતે હૈ લેકિન ખેતી મેં કુછ એસી તકનીકી કુછ એસે નયે તરીકે અપના કર હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો ઉસમેં એક નવીનીકરણ લા સકતે હૈ તો આજ કાર્યક્રમ મેં હમારી આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો બાગવાની મેં વિવિધીકરણ કેસે લાયે
1: કિસાન ભાઈઓ વિવિધીકરણ કી બાત કર રહે હૈ ઔર અપન બાગવાની કી બાત કર રહે હૈ
0: જી બિલકુલ
1: બાગવાની કે અંતર્ગત અપને પાસ મેં સબ્જીયાં ભી આતી હૈ બાગવાની મેં હમારે પાસ ફલ ભી આતે હૈ જૈસે આમ વગેરે હૈ ઔર બાગવાની મેં હમારે બગીચે ઔર યે ફૂલ વાલે યે ભી આતે હૈ
0: જી બિલકુલ
1: તો આજ અપન જો વિવિધીકરણ કી બાત કર રહે હૈ યાની કે કોઈ એસી નઈ ચીજે જો બાગવાની કે અંતર્ગત આતી હૈ તો હમ સબ્જીઓ કે બારે મેં આજ બતાના હૈ ક્યોંકિ હમારે કિસાન ભાઈ સબ્જીઓ કી ખેતી બહોત એસ કરતે હૈ
0: જી બિલકુલ
1: ઔર ઉસમે હમ વિવિધીકરણ કરકે કિસ તરહ સે હમારે જમીન કે ઉપર એક ખેત કા જો હમારા એક સીમિત સંસાધન હૈ ઉસમે હમ કઈ સારી ફસલે કેસે એક સાથ કર સકતે હૈ
0: જી બિલકુલ
1: તો ઇસ બારે મેં અપન બાત કરેંગે ઔર ઇસકે અંતર્ગત જો અપન એક બહોત હી પ્રચલિત શબ્દ હૈ બહુપરક ખેતી
0: જી બિલકુલ સર
1: તો બહુપરક ખેતી કે બારે મેં આજ અપન બાત કરેંગે
0: જી બિલકુલ સર આપને સહી કહા જૈસા કી હમ બાગવાની મેં વિવિધકરણ કી બાત કર રહે હૈ તો ઉસમે હમ આજ સબ્જીઓ કે બારે મેં બાત કરેંગે જૈસા કી આપને કહા કે આજ હમ એક બહોત પ્રચલિત શબ્દ હૈ સબ્જીઓ કો લેકર કે બહુપરખ ક્યા હૈ તો સબસે પહેલે સર હમ આપસે યહી જાનના ચાહેંગે કે ઇસે હમારે કિસાન ભાઈ બહેન કેસે સમજ સકતે હૈ
1: બહુપરખ ખેતી જૈસે અપન બાત કર રહે હૈ તો જૈસે હમારા જો ખેત હૈ તો ઉસમે જો ખેત કે કઈ સારે સ્તર હોતે હૈ તો ઉસકે સિદ્ધાંત પે હમકો યે ખેતી કી બાત કર રહે હૈ બહુપરખ
0: જી હા
1: યાની કે કઈ સારી પરતેં ભી સમજ સકતે હૈ બહુપરત ભી સમજ સકતે
0: હૈ જી બિલકુલ સર
1: અગર આપણે સામાન્ય ભાષા મેં સમજે તો બહુપરત ભી સમજ સકતે હૈ વૈસે યે બહુપરખ હૈ શબ્દ તો ઉસમે ઉસકા જો સિદ્ધાંત હોતા હૈ કે હમ યે એકીકૃત ખેતી કરેં ઔર ઉસકે અંતર્ગત હમ જમીન કા અધિક સે અધિક ઉપયોગ લે મિટ્ટી કા અધિક સે અધિક ઉપયોગ લે ઔર જો હમારા સીમિત સંસાધન હૈ યા સીમિત ખેત હૈ ઉસકે અંદર હમ અધિક સે અધિક લાભ લે
0: જી બિલકુલ
1: ઇસ મૂળ સિદ્ધાંત પર યે બહુપરક ખેતી કામ કરતી હૈ ઇસકો અપન સમજને કે લિયે એસા સમજ સકતે હૈ કે જિસસે હમારા ખેત હૈ તો ખેત કે અંદર જમીન કી ગહેરાઈ મેં ભી કુછ સબ્જીયાં હોતી હૈ
0: જી બિલકુલ
1: જમીન કી પરત પે ભી કુછ સબ્જી હોતી હૈ ઔર કુછ હવા કે અંદર ભી હોતી હૈ અબ કેસે અગર સમજે ઇસકો બહુપરક ખેતી કેસે જૈસે કી જમીન કે અંદર કોણ કોણ સી સબ્જીયાં હોતી હૈ હમારે પાસ હલ્દી હોતી હૈ
0: જી જી
1: હમારે પાસ અદરક હોતા હૈ આલૂ હોતા હૈ યે તો હોતી હૈ જમીન કે અંદર ઉસી ખેત કે અગર હમ ઉપર લગાના ચાહે તો હમ કોણ સી સબ્જી લગા સકતે હૈ હમ લગા સકતે હૈ પત્તે વાલી જૈસે આપકા ધનિયા હૈ પાલક હૈ મેથી હૈ યે લગા સકતે હૈ ઔર ઉપરી ભાગ મેં યાની કે હવા કે ઉપર જો હમારે જીતને કદ્દુ વર્ગી કે સબ્જીયાં હૈ જૈસે કે હમારા ટિંડા હૈ કરેલા હૈ તુરઈ હૈ લૌકી હૈ યા જીતને ભી હમારે કકડી હૈ યે ઇસ તરહ કે જીતને ભી હમ લગા સકતે હૈ
0: યાની
1: બહુપરક ખેતી મેં હમ જમીન કે મિટ્ટી કે અંદર ભી કામ મેં લે લેતે હૈ જમીન કે સતહ કો ભી કામ મેં લેતે હૈ ઔર હવા કે ઉપર જો સબ્જીયાં લગ સકતી હૈ ઉસકા યાની કે એક હી ખેત પર હમ કઈ સારી સબ્જીયાં કા ઇસ્તેમાલ કર સકતે હૈ ઉસકી ખેતી કર સકતે હૈ ઔર ઉસકા મૂળ સિદ્ધાંત જૈસા ભી હમ બાત કર રહે હૈ કે હમ ઉસમે ઉસી જમીન કી અગર હમારે પાસ છોટા સા ટુકડા ભી હૈ આધા બીઘા ભી હૈ તો ઉસમે હમ આધે બીઘા કે જો અપન ઉપજ લેતે હૈ ઉસકી જગહ હમ ડેઢ બીઘા કી ઉપજ લે સકતે હૈ
0: જી બિલકુલ સર
1: તો ઇસ તરહ કી ખેતી કો હમ જો ફસલ વિવિધીકરણ કે અંતર્ગત યે બહુપરક ખેતી ભી આતી હૈ યાની કી હમ કઈ સારી સબ્જીયોં કા એક હી ખેત પર ઉપયોગ લેકે બુવાઈ કરકે ઔર ઉસકો લે સકતે હૈ તો ઇસ તરહ સે જમીન કી ગહેરાઈ મેં તો ઇસકા સિદ્ધાંત મેં ક્યા હુઆ કે હમ જમીન કે મિટ્ટી કે જો પ્રત્યેક જો ઉસકી જગહ હૈ ઉસકા ઉપયોગ લે રહે હૈ
0: જી બિલકુલ સર
1: ક્યોંકિ સબકી જડે અલગ અલગ હોતી હૈ અભી અપન જો સબ્જીયાં હોતી હૈ જડ કે અંદર વાલી તો ઉસકા અદરક વગેરે હૈ વો જમીન કે અંદર હોતા હૈ ઉસકા જો સ્થાન હોતા હૈ વો ડેઢ ફીટ અંદર કા આતા હૈ
0: જી જી
1: ઉપર કા જો હૈ વો જિસે અપના ધનિયા વગેરે હોતા હૈ બિલકુલ પરત પે હોતા હૈ ઇસકી જડે બિલકુલ ગહેરી નહીં જાતી
0: નહીં જાતી જી
1: ઔર જમીન કે ઉપર હી રહેતી હૈ યાની કે ઉસમે જો જડે હૈ તો વો જો મિટ્ટી કા સે ખેત વો લેતી હૈ અપના पोषण लेती है उनको उसका फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर अपन ने कद्दू वगैरह लगाया तो उसकी तो पौधा ही दूर दूर होता है तो उसमें और वो हवा में जाता है, हमारी झाड़ियों पे चला जाता है। हम अगर उसको अपने खूंटियां लगा के तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, या हमारे घरों में घरों के ऊपर अपन चलाते हैं वेले जो कहते हैं
0: जी जी।
1: तो उसका भी हम लाभ ले लेते हैं। तो इस खरीद खेती में हम तीन स्तर पे लेते हैं। इससे क्या ये इसके सिद्धांत में क्या भी ये भी है कि जो हम प्रकाश की बात करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है या जो पौधों को आवश्यक रूप से गर्मी चाहिए तापमान चाहिए तो वो भी उसका विभिन्न जगहों पर मिल जाता है। आपस में पौधों से पौधों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, एक फसल से दूसरे फसल के बीच में हवा के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती, प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती, और जो उसका पोषण है जो पोषक तत्व उसका आवश्यकता उसके लिए आपस में उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। तो इस तरह से तीन स्तर के ऊपर हम बहुपरक खेती कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने आज बहुत अच्छी बात हमारे किसान भाई बहनों को बताई है कि वो बहुपरक खेती को अपना कर अपनी जो आजीविका है वो उसे बहुत अच्छे से ले सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनके पास खेत होता है लेकिन वो एक ही फसल ले पाते हैं, या तो वो भिंडी कर रहे होते हैं या वो कोई एक विशेष सब्जी ही करते हैं। लेकिन जैसा कि आपके माध्यम से हम जान पाए कि इसमें तीन परतों के हिसाब से हमारे किसान भाई बहन हैं वो खेती कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें सिंचाई भी सीमित मात्रा में करनी होगी और खाद जो वो एक ही खेत में डालते हैं उसी खेत से उनको बहुत सारे उत्पादन मिल जाएंगे,
1: उसी खेत से उत्पादन मिल सकता है। और अलग अलग क्योंकि जितनी जड़ें जिस हिसाब से जाती है उस हिसाब से वो खाद लेगी
0: जी जी,
1: तो उस हिसाब से उसका पोषण भी हो जाएगा
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये तो हम तीन की बात की, मूल सिद्धांत तो तीन का ही है, मिट्टी के अंदर, मिट्टी की सतह पर और मिट्टी का हवा में
0: जी बिल्कुल,
1: तो तीन है। लेकिन अगर इसको हम और वैज्ञानिक बात करें तो हम इसको पांच भाग में बांट सकते हैं
0: जी बिल्कुल।
1: पांच भाग में बांटने के लिए कैसे बात करेंगे कि जैसे तो अपना पहला तो है अपन जमीन की बात करी
0: जी हाँ,
1: जैसे अदरक है ये तो अपना जमीन की है, अदरक है, हल्दी है ये जमीन के अंदर होती है। फिर दूसरा जमीन की सतह पे, सतह पे कौन सी फसलें होती है कि जो अपना जैसे जो छोटी फसलें होती है धनिया है, मेथी है
0: जी जी,
1: ये पालक है, ये हमारी जमीन की सतह पे होती है। इसके ऊपर की बात कौन सी करेंगे, तीसरी फसल कौन सी करते हैं हम, तीसरी फसल के रूप में बात करेंगे तो हम जो हमारे मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है जो कम से कम भी 3-4 फुट की होती है उस की बात करेंगे। उसके ऊपर चौथी फसल की बात करेंगे तो चौथी फसल कौन सी होगी, जैसे हमारे पपीता है
0: जी जी,
1: नींबू है, ये ऐसे फसलें हैं जो हवा में होती है, काफी लंबे समय तक चलती है
0: जी जी।
1: चौथे फसल के रूप में अब पांचवी फसल की बात करेंगे तो पांचवी फसल तो अपन ने पहली बात कर ली, जैसे कद्दू है
0: जी,
1: करेला है जो हमारे वेले पे चलते हैं
0: जी।
1: तो एक ही स्थान पे हम पांच परत की खेती की सब्जियां भी कर सकते हैं
0: जी।
1: तो इस तरह से बहुपरतें तो बहुपरक खेती भी कर सकते हैं
0: जी बिल्कुल।
1: अब ये बात तो अब इसकी कंसेप्ट हो गई कि किस तरह से हम करेंगे
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन अब आप जैसे अभी किसान भाइयों के दिमाग में प्रश्न भी उठने लगा होगा कि सब आप बात तो कर रहे हो लेकिन हम करेंगे कैसे,
0: कैसे करेंगे जी बिल्कुल,
1: एक ही जमीन पे कैसे करेंगे
0: जी हाँ।
1: तो इसका भी बहुत साधारण सा जवाब है जो सभी किसान भाइयों को पता भी है। तो उसका जवाब में हम कैसे करते हैं कि हम जानते हैं कि कई सारी फसलें तो हमारी रोप पर होती है, उसकी रोप बनानी पड़ती है हमको
0: जी हाँ।
1: जैसे मिर्ची का रोप होता है, टमाटर का रोप होता है, बैंगन का रोप होता है, पपीते का रोप होता है, तो हमें इनके समय को अलग अलग बांटना पड़ेगा
0: जी हाँ।
1: जब जमीन के अंदर वाली की समय अलग है, जमीन के ऊपर वाले का समय अलग है, रोप में अलग, जो हम ट्रे के ऊपर रोप में लगाते हैं या हम उसको अगर सामान्य भाषा में हम जो ढूंढे हैं उसके अंदर रोप में लगाएंगे, पॉलीथिन थैलियों में लगाएंगे, जैसे अपना वो आता है पपीते वगैरह का आता है वो थैलियों में लग के हमारा रोप बनता है
0: जी हाँ।
1: तो उसका जो रोप भी तैयार अलग से करते रहेंगे और उसके बीच में उनकी सब्जियों की खेती भी कर लेंगे
0: जी।
1: फिर वो जगह आएगी तो क्योंकि उनके सबके समय अलग
0: अलग अलग होंगे जी बिल्कुल।
1: तो अगर हम अपना थोड़ा सा इसको विचार को समझें और थोड़ी सी इस भाषा को समझें तो हमारे किसान भाई सभी आसानी से इन खेती को कर सकते हैं। तो वो क्योंकि वो सब जान रहे हैं कि अभी तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो रोप है तो रोप के लिए इंतजार करते हैं, रोप आएगा तब बोई करेंगे, जब तक हमारा खेत खाली पड़ा रहे तो उसका खेत खाली ना पड़ा रहे तब उस बीच में कोई दूसरी सब्जी कर ले, और जब वो रोप वाला आएगा तो उसमें रोप लगा ले, और रोप जब तक बड़ा होगा जब तक नीचे वाली सब्जी खाली हो जाएगी
0: जी हाँ।
1: तो ऐसे हम बहुपरक खेती को अपना समयबद्ध कार्यक्रम करके कर सकते हैं, और इस तरह का ये कंसेप्ट भी चलता है कि किस तरह से इनको हम अधिक से अधिक लाभ लें। तो जिस सिद्धांत का भी काम हो जाएगा और विज्ञान का भी काम हो जाता है, और हमारे लिए क्या है क्योंकि हम जो हमारे जगह छोटी सी है, हमारे पास आधा बीघा, एक बीघा, दो बीघा जमीन है जिसपे खेती की सब्जी कर रहे हैं। अब खेती में भी क्योंकि उस हिसाब से हमें सब्जियों की जैसे मांग बहुत रहती है
0: जी बिल्कुल सर।
1: अभी अपन देखते हैं कि कई सारे सब्जियों का भाव उसके आवश्यकता के अनुरूप चलता है
0: जी, बिल्कुल।
1: उतार चढ़ाव भी होता है और उससे हमारे को जो किसान भाइयों की आमदनी में भी एक गुंजाइश रहती है, वृद्धि होती है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी सब्जी का कब मांग ज्यादा आने वाली है, तो उसके अनुरूप हमारी खेती को करना पड़ेगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि लगभग हमको प्रति व्यक्ति 300 ग्राम पर डे प्रति व्यक्ति जो है 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है
0: जी हाँ।
1: जबकि आज उसकी काफी कमी है
0: जी।
1: अगर आप इंडिया में ही बात करें तो हमारे पास करीब 240 ग्राम के आसपास ही उपलब्ध है प्रति व्यक्ति, जबकि हमको 300 ग्राम की आवश्यकता है। तो 300 ग्राम सब्जी की जो हमारे स्वस्थता के लिए चाहिए तो उसकी पूर्ति करना है और हमें उसके साथ साथ हमारा जो सीमित संसाधन में उनको अधिक से अधिक आय करनी है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो इस तरह से ये बहुपरक खेती में फसल विविधीकरण में एक ही खेत पर कई सारी सब्जियों की खेती करके हम कई सारे फसलें उगा सकते हैं
0: जी, बिल्कुल। तो सर जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी है कि किस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो सब्जियों की बहुपरक खेती कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, तो सर अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: अंत में यही कहना चाहूंगा कि जैसे अपन बात कर रहे हैं कि हमें सब्जियों से अधिक लाभ लेना चाहिए। सब्जियों की फसल जो है, सब्जियों की खेती है, बहुत ही सीमित जगहों पर होती है। जैसे हम दूसरी खेती करते हैं, जैसे हम अपना मक्का कर रहे हैं, सोयाबीन कर रहे हैं, या जो फसल हमारे बहुत बड़े हेक्टर में हो रही है, लेकिन सब्जियां क्या है कि कम क्षेत्र में होती है
0: जी,
1: उसको हमें अधिक से अधिक उसका अगर उसमें वैज्ञानिक तरीके से हम सोचे, समय बद सोचे, तो हमें अधिक से अधिक लाभ मिलता है। सब्जियां इस तरह की फसलें हैं कि जिसमें हमें दैनिक आय होती रहती है और घर के लिए भी हमारा आवश्यकता, अगर हम आय की बात भी नहीं कर रहे तो हमारे घर के पोषण के लिए आवश्यकता होती है
0: जी, बिल्कुल।
1: मैंने आपको इसीलिए बताया कि 300 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, तो इतनी सब्जियों के अगर हमारे घर में, क्योंकि जब सब्जियां अपन खाते हैं तो हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पेट का विकार और जो शरीर में जो हमारे जो विषल तत्व होते हैं उसको निकालने में सब्जियां बहुत बड़ा लाभकारी होता है, विटामिन का बहुत बड़ा सोर्स होता है वो, तो सब्जियों की आवश्यकता तो होती है। कई बार हम उसमें अपने अगर हमारे घर पे, हमारे किचन गार्डन में या हमारी पोषण वाटिका में या हमारे खेत के पिछवाड़े पे इस तरह से अगर सब्जियां हैं या हमारे फसलों के साथ में भी सब्जियां हैं
0: जी, बिल्कुल,
1: तो हमारे खाने के लिए तो एक अच्छा साधन हो जाता है
0: जी हाँ।
1: किसानों के घर पे हमें तो कि हमारा जो पोषण है वो स्वतः ही मिल जाता है। एक सब्जी हम बाजार से खरीदते हैं और एक खुद ही उगा लेते हैं तो
0: उसमें बहुत फर्क होता है,
1: तो किसान भाइयों को कम से कम ये तो ध्यान रखना ही है कि अगर हम उसके लिए लाभ के लिए बात ना करें, बाजार के बेचने के लिए बात ना करें, तो हमारे घर की आवश्यकताओं की तो पूर्ति करें। और अक्सर अपन देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों के खेत में एक ही तरह की सब्जी लगा लेते हैं, भिंडी लगा ली
0: जी जी,
1: अपना लौकी लगा ली या एक भी जो सब्जियां सीजनल आ रही है वो एक दो तीन लगा ली, लेकिन इसमें हम इस सिद्धांत पे हम कई सारी सब्जियां हमारे खेत पे उपलब्ध कराते हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: हम इसको अगर आय के रूप में ना भी बात करें तो हमें केवल हमारे घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बात कर सकते हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: तो हमारे सीमित जगहों पर इसको इसका बहुपरक खेती का लाभ लेना चाहिए
0: जी, बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपका अमूल्य कीमती समय आपने हमें और हमारे किसान भाई बहनों को दिया,
1: धन्यवाद।
0: जिम के किसान भाई बहनों अवड़े अपड़े वेस में प्रमोद जी रोकड़िया सर जुड़े तक हता ने एनाए आपने घणे असल तरीका तक बताड़ दीदू है कि आपड़े बहुपरक खेती हरते करी सका। तो किसान भाई बहनों आशा कर रहा कि आपे भी आ बात ध्यान तक हामरी होगा ने आप भी सब्जनी आ खेती करीने आपड़ी आमदनी वधावोगा। तो किसान भाई बहनो वाते तो आपड़ी कार्यक्रम में घना कनी थी गई है, हवे टाइम भी थी गयो है अपने अणस कार्यक्रम तकी सूटा पड़वानो, तो आपड़े सूटा तो पड़ा पण साथे पहले हामरी लाइक और गीत मोरे पड़ा सूटा।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन, यानी कि सतत विकास की आधारशिला को लेकर। श्रोता साथियों, कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां परिवार के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जाए, लेकिन घर की आय, भोजन, पानी और जगह उतनी ही रहे। कुछ समय बाद वहां परेशानियां बढ़ने लगेगी, और यही स्थिति किसी देश, समाज और दुनिया की भी हो सकती है। हम देखते हैं अंजलि की जनसंख्या मानव शक्ति है, लेकिन जब जनसंख्या की वृद्धि उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाती है तब विकास की गति धीमी पड़ने लगती है।
0: जी हाँ,
1: इसीलिए आज के सच्चा स्वराज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन पर। ये केवल

0: सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी नागरिकों का साझा दायित्व है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी बातें ढेर सारी होंगी कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय पर, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज बातें रहने वाली है जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन यानी कि सतत विकास की आधारशिला को लेकर।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन किसी भी राष्ट्र के सतत और समावेशी विकास का मूल आधार है। मानव सभ्यता की प्रगति संसाधनों के उचित उपयोग पर ही निर्भर करती है श्रोता साथियों, जबकि संसाधनों का उपयोग करने वाला प्रमुख तत्व जनसंख्या है।
0: बिल्कुल।
1: यदि जनसंख्या और संसाधनों के बीच उचित संतुलन बना रहे तो समाज में समृद्धि, स्थिरता और विकास संभव होता है। लेकिन जागृति जी, जब जनसंख्या वृद्धि की गति संसाधनों की उपलब्धता और विकास की गति से अधिक हो जाती है तब अनेक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं जन्म लेने लगती है।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, सच्चा स्वराज केवल अधिकारों की बात नहीं करता बल्कि जिम्मेदारियों की भी बात करता है। जब नागरिक संसाधनों का सम्मान करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं तभी वास्तविक स्वराज की स्थापना होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, जैसे कि अक्सर बढ़ती जनसंख्या को समस्या के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और कुशल हो तो वही देश की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
1: बिल्कुल।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, हमारे लिए ये एक अवसर भी है। यदि युवाओं को अच्छी शिक्षा दी जाए, कौशल प्रशिक्षण दिए जाए, रोजगार के अवसर मिलेंगे तो वे देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मानव संसाधन का विकास ही किसी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होता है।
1: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि जनसंख्या किसी देश की शक्ति भी है और चुनौती भी।
0: बिल्कुल।
1: यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस जनसंख्या को कितना शिक्षित, कुशल और जागरूक बनाया गया है। दूसरी ओर संसाधन वे संसाधन है जो मानव जीवन को चलाने और विकास को गति देने में सहायता करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसमें जल, भूमि, वन, खनिज, ऊर्जा, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर शामिल होते हैं। श्रोता साथियों, जब जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बना रहता है तब विकास का लाभ जो है वो समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन असंतुलन की स्थिति में जागृति जी, संसाधनों पर दबाव पड़ता है और जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। आज दुनिया के अनेक देशों के सामने बढ़ती जनसंख्या एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में खड़ी है। जनसंख्या वृद्धि के साथ भोजन, पानी, ऊर्जा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की मांग भी बढ़ रही है। यदि इन मांगों के अनुरूप संसाधनों का विकास नहीं हुआ तो हम देखते हैं कि संसाधनों की कमी महसूस होने लगती है।
0: बिल्कुल।
1: और यही कारण है कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बनाए रखने में परिवार नियोजन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छोटा परिवार न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है बल्कि बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है।
1: बिल्कुल।
0: परिवार नियोजन का उद्देश्य केवल जनसंख्या नियंत्रण नहीं है बल्कि बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी है।
1: जी हाँ।
0: जागरूकता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कहा भी गया है कि छोटा परिवार सुख का आधार है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन केवल एक आर्थिक और सामाजिक मुद्दा नहीं है बल्कि मानवता के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। जहां विकास की शक्ति है और संसाधन का विकास आधार है तो दोनों के बीच संतुलन बनाए रखकर ही हम एक समृद्ध, सुरक्षित और सतत भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: आज आवश्यकता है कि दूरदर्शी नीतियों और जन जागरूकता, जिम्मेदार नागरिकता और सामूहिक प्रयासों की। जब हम संसाधनों का सम्मान करेंगे और विकास को संतुलित दृष्टि से देखेंगे तभी सच्चे अर्थों में स्वावलंबी, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण संभव होगा।
0: बिल्कुल अंजलि, यही हम सतत विकास की आवश्यकता को लेकर हमारे श्रोता साथियों से बातचीत करें तो श्रोता साथियों, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना ही सतत विकास होता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम आज संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कम बचेगा। इसलिए विकास की योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और सामाजिक न्याय को शामिल करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: सतत विकास ही वो मार्ग है जो जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें चल रही हैं। ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यहीं बात करें पर्यावरण की दृष्टि से किस तरीके से जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। तो श्रोता साथियों, बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग बढ़ता है। इससे जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती है। आज दुनिया के अनेक हिस्से अधिकतम गर्मी, सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों का समाधान तभी संभव है श्रोता साथियों, जब विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। तेजी से बढ़ता शहरीकरण भी जनसंख्या वृद्धि का एक परिणाम है जागृति जी। रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं।
1: जी हाँ।
0: इससे शहरों पर अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है, आवास, परिवहन, स्वच्छता और कई अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी महसूस होने लगती है। कई शहरों में झुग्गी बस्तियों का विस्तार इसी असंतुलन का परिणाम है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था का विषय नहीं है, ये जिम्मेदार नागरिकता का भी प्रतीक है। जब नागरिक पानी बचाते हैं, बिजली बचाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, स्वच्छता बनाए रखते हैं और संसाधनों का सम्मान करते हैं, तब वे सच्चे स्वराज की भावना को मजबूत करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति यदि अपने स्तर पर छोटे छोटे प्रयास करे तो बड़ा परिवर्तन भी संभव है। संसाधनों का संरक्षण किसी एक संस्था या सरकार का कार्य नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: जी जी
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन केवल विकास का मुद्दा नहीं बल्कि मानवता के भविष्य का प्रश्न है।
0: जी जी।
1: हमें ये समझना होगा कि संसाधन असीमित नहीं है, यदि हम उनका समझदारी से उपयोग करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और समृद्ध भविष्य दे पाएंगे। हम जल बचाएंगे, ऊर्जा बचाएंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे और संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे तो ही हम हमारे समाज और देश को आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी जी।
1: क्योंकि संतुलित जनसंख्या और सुरक्षित संसाधन ही समृद्ध समाज, मजबूत राष्ट्र और सच्चे स्वराज की पहचान होती है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, सतत विकास की अवधारणा भी इसी संतुलन पर आधारित है। सतत विकास का अर्थ वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय आवश्यक है।
1: जी हाँ।
0: जब विकास की योजनाएं संसाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है श्रोता साथियों, तब संतुलन और दीर्घकालिक प्रगति संभव हो पाती है। सच्चे स्वराज की भावना भी इसी विचार को मजबूत करती है कि विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक नागरिक को अपने संसाधनों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। पानी की बचत, बिजली का संयमित उपयोग, वृक्षारोपण, स्वच्छता और जिम्मेदार उपभोग जैसी छोटी छोटी आदतें बड़े परिवर्तन ला सकती हैं।
1: जी हाँ।
0: जब समाज के लोग स्वयं जागरूक होकर संसाधनों के संरक्षण में भाग लेते हैं तब संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त हो पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो आज की चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन केवल एक आर्थिक या पर्यावरणीय विषय नहीं है बल्कि हमारे भविष्य, हमारी जीवन शैली और आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
0: बिल्कुल।
1: जनसंख्या बढ़ना स्वाभाविक है श्रोताओं, लेकिन संसाधनों का सीमित होना भी एक सच्चाई है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम विकास की दौड़ में संसाधनों के संरक्षण को कभी न भूलें। हमें ये याद रखना होगा कि प्रकृति ने हमें जल, जंगल, जमीन, हवा और खनिजों के रूप में अनमोल धरोहर सौंपी है।
0: बिल्कुल।
1: ये केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी इन पर उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। यदि हम आज लापरवाही करेंगे तो कल हमारी संतानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ जाएगी।
0: जी जी।
1: लेकिन यदि हम आज जिम्मेदारी दिखाएंगे तो आने वाला कल और अधिक सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन केवल एक आर्थिक और सामाजिक मुद्दा नहीं है बल्कि मानवता के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। जनसंख्या विकास की शक्ति है और संसाधन विकास का आधार। श्रोता साथियों, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखकर ही हम एक समृद्ध, सुरक्षित और सतत भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आवश्यकता है दूरदर्शी नीतियों, जन जागरूकता, जिम्मेदार नागरिकता और सामूहिक प्रयासों की। जब हम संसाधनों का सम्मान करेंगे और विकास को संतुलित दृष्टि से देखेंगे तभी सच्चे अर्थों में स्वावलंबी, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण संभव हो पाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि सच्चा स्वराज तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझे। जब हम पानी की एक एक बूंद बचाने का प्रयास करेंगे, जब हम बिजली का अनावश्यक उपयोग रोकेंगे, जब हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, जब हम परिवार और समाज में जागरूकता फैलाएंगे, तब हम केवल संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे बल्कि एक मजबूत राष्ट्र की नींव भी रखेंगे।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, इतिहास गवाह है कि वे समाज ही आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपने संसाधनों का सम्मान किया, उनका संरक्षण किया और उनका न्यायपूर्ण उपयोग किया। आज हमारे सामने भी वही अवसर है। हमें तय करना है कि हम संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का रास्ता चुनेंगे या संरक्षण और संतुलन का मार्ग अपनाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब एक बात आपको कहना चाहेंगे कि हम जल की रक्षा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे और अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक जागरूक समाज का निर्माण करता है अंजलि, और एक जागरूक समाज ही सच्चे स्वराज की पहचान बनता है। इसलिए याद रखिए, विकास केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों, बड़े उद्योगों से नहीं मापा जा सकता। वास्तविक विकास तो वो है जिसमें हर व्यक्ति को पर्याप्त संसाधन मिले, प्रकृति सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। यही संतुलन समृद्धि का आधार है, यही सतत विकास का मार्ग है और यही सच्चे स्वराज का सपना है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान पाए हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वाकथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम घूमर हमर व्यवहारी अमर हित्य बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
2: राम राम
0: होवी बोनो आप सब हमले रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में
1: होवे भाईन बोनो लेने हाजिर थी गये कार्यक्रम घूमर ने लेने एक ना विषय ने हाथे मनीषा बोन आज आप कार्यक्रम में बोनो थे की बातचीत नु विषय है पोषण वाली हर घर की जरूरत ने लेने आपड़े देखो हो के आजे मोगाई जे है ई घणी वधी रही है आपड़ा घर बाजार में सब्जी लेवा सो तो ई भी घणी मोगी थई गई है ने एनी जे गुणवत्ता है ई भी कम थई गई है बीजी आडी आपड़ी जे बूने है ने जे सूर है हेण में खून की कमी पोषण की कमी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता जेवी समस्या भी वधी रही है एवं टाइम में अगर आपड़ी जे बूने है ये घर में इस नानी सी पोषण वाली लगाड़ी देगा तो अणी समस्या तकी आसानी तकी आपड़ा टिकाउ समाधान अपना ने मिली सके ताजे कार्यक्रम में जानेंगे आने विषय माते घना कनी बात है कि आपड़ी बूने पोषण वाली हर ते लगाड़ी सके ने आ आपड़ी बूने ने स्वास्थ्य भले किम जरूरी है
0: હવે અંજલિ બોન વાતે તો ઘણા કાની થેન્ક આના વિશે માતે આપણે બોને ખતી અબર હમણા આ ગીત ને મોરે કરે આપણી વાતી
1: હવે

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े नी कितली शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
2: होवे आज नाना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, शिकायतें जीवन को हल्का नहीं करती है, बल्कि मन को भारी कर देती है। जो हर परिस्थिति में केवल कमी ढूंढता है, वह खुशियों के बीच रहकर भी खुश नहीं रह पाता। जी हाँ दोस्तों, बारिशों से शिकायत होगी तो इंद्रधनुष नहीं दिखेगा, धूप से शिकायत होगी तो उजाला भी अच्छा नहीं लगेगा। जिंदगी बदलने से पहले दोस्तों, कभी शिकायत करने का तरीका बदल कर भी देखिए। जी हाँ, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोता साथियों, सपनों की उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम है जो जीवन की छोटी छोटी बातों में छिपे बड़े संदेशों को आपके सामने लाता है। आज हम एक ऐसे ही विषय पर आपसे बात करेंगे जो शायद हम सभी से जुड़ा है, लेकिन हम अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते। आज का विषय है, बिना शिकायत के एक दिन जीना कितना कठिन है। तो बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी होंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने गीत से पहले आज का विषय बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं बिना शिकायत के एक दिन जीना कितना कठिन है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार सुनने पर ही विषय जो है वो आसान लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए कि क्या हम एक पूरा दिन बिना किसी शिकायत के बिता सकते हैं? बिजली चली जाए तो शिकायत, ट्रैफिक मिल जाए तो शिकायत, गर्मी हो तो शिकायत, बारिश हो तो शिकायत, इसी के साथ काम ज्यादा हो तो शिकायत, काम कम हो तो शिकायत, कभी लोगों से शिकायत, कभी किस्मत से तो कभी समय से तो कभी खुद से। ऐसा लगता है ना दोस्तों कि जैसे शिकायत करना हमारी आदत सी बन गई है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस आदत का असर केवल हमारे शब्दों पर ही नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारे रिश्तों और हमारे पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए दोस्तों, शिकायतें तब पैदा होती हैं जब हमारी उम्मीदें और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाती। हम चाहते हैं बहुत सी बार कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता है। यही से असंतोष शुरू होने लगता है और असंतोष धीरे धीरे शिकायतों का रूप लेने लगता है। और किसी ने दोस्तों बहुत अच्छी बात कही है कि जहाँ स्वीकार करने की आदत कम होती है वहाँ शिकायतें ज्यादा होती है। अब आपके मन में भी दोस्तों एक सवाल आ रहा होगा ना कि क्या शिकायत करना गलत है? तो दोस्तों, हर शिकायत गलत नहीं होती है। यदि समाज में अन्याय हो, यदि किसी के साथ गलत व्यवहार हो, यदि किसी व्यवस्था में सुधार की जरूरत हो तो आवाज उठाना जरूरी है। लेकिन हर छोटी छोटी बात पर शिकायत करना, हर परिस्थिति में केवल कमी ढूंढना और हर व्यक्ति में केवल दोष देखना, यही आदत धीरे धीरे मन की शांति छीनने लगती है। तो दोस्तों, यही अब बात आती है कि शिकायत का सबसे बड़ा आखिरकार नुकसान क्या है। तो दोस्तों, बताना चाहूंगी कि जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है ना, वह धीरे धीरे अपने जीवन की अच्छी आदतों को देखना ही बंद कर देता है। उसे परिवार का प्यार दिखाई नहीं देता, दोस्तों का साथ महसूस नहीं होता, अपनी उपलब्धियां छोटी लगने लगती हैं और हर नई सुबह भी बोझ जैसे लगने लगती है। इसलिए शिकायत केवल शब्द नहीं होती, वे हमारी सोच का आईना होती है। इसलिए कहना चाहूंगी दोस्तों, शिकायतों की सूची जितनी लंबी होती है ना, खुशियों की सूची उतनी ही छोटी हो जाती है। इसलिए हर दिन में कुछ कमियां मत ढूंढिए, हर दिन हमारे लिए एक आशीर्वाद होता है। हम इसे कैसे देखते हैं ये हमारी सोच तय करती है। इसलिए दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आज सुबह उठकर आप क्या संकल्प ले सकते हैं। आप संकल्प लीजिए कि आज बिना किसी शिकायत के आप दिन बिताएंगे। देखिएगा दोस्तों कि कुछ ही घंटे में आपको महसूस होगा कि शिकायत करना कितना सहज है और ये हमारी आदत बन चुका है। कभी मौसम से, तो कभी मोबाइल की धीमी स्पीड से, तो कभी किसी की बात से, तो कभी अपने काम से, और यही एहसास इस विषय का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, जैसा कि बातें कार्यक्रम में मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है कि हम ऐसा कोई एक दिन है जिस दिन बिना शिकायत उस दिन को जी सकते हैं, तो बातें इस तरीके से मेरी कार्यक्रम में आपसे यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाने का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा आपके अपने साथी अंजलि पारेषर के साथ में कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।
1: सुख हो या सुख, जब सदा

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने गीत से पहले ढेर सारी बातों से आपको मैंने अवगत करवाया था, यही दोस्तों बात आती है कि बच्चे सुनने से ज्यादा बहुत सी बार देख कर सीखते हैं। यदि घर में हर समय शिकायत का माहौल रहेगा तो बच्चे भी वही भाषा सीखेंगे, लेकिन यदि वे देखेंगे कि कठिन परिस्थिति में भी परिवार समाधान खोजता है तो वे भी सकारात्मक बनेंगे। इसलिए आज बहुत से युवा यह कहते हैं कि मेरे पास अवसर नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे पास साधन कम है। हो सकता है कि कुछ बातें सही भी हो, लेकिन शिकायत करने से परिस्थितियां नहीं बदलती, परिवर्तन हमेशा प्रयास से ही आता है। इसलिए दोस्तों, शिकायत रास्ता नहीं बनाती बल्कि प्रयास रास्ता बनाते हैं। पुरानी पीढ़ी ने कम साधनों में भी जीवन जिया, कठिनाइयां थी, सुविधाएं कम थी, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में जीने की कला सीख ली थी। और यही अनुभव हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का पहला समाधान शिकायत नहीं, धैर्य और प्रयास भी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि यदि समाज शिकायत कम करे और समाधान ज्यादा खोजे तो क्या होगा? क्योंकि यदि हर व्यक्ति केवल शिकायत करने के बजाय एक छोटा सा समाधान खोजने लगे, तो एक अच्छी बात कहने लगे, एक व्यक्ति की मदद करने लगे, तो हमारा परिवार, मोहल्ला और समाज कितना बदल सकता है। समाज बदलने की शुरुआत बड़े भाषणों से नहीं, छोटी आदतों से होती है। हर रात सोने से पहले 3 शिकायतें लिखने के बजाय 3 ऐसी बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपका मन कमी नहीं, अच्छाई देखने लगेगा, और यही अभ्यास जीवन की दिशा बदल सकता है। तो श्रोता साथियों, कहना चाहूंगी कि शिकायत करना आसान है, लेकिन स्वीकार करना और सुधार के लिए कदम उठाना साहस का काम है। जीवन में हर दिन कुछ न कुछ हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है। हर व्यक्ति हमारे अनुसार व्यवहार भी नहीं करेगा और हर परिस्थिति हमारे पक्ष में नहीं होगी। यदि हम हर छोटी बात पर शिकायत करते रहेंगे तो हम जीवन की उन अनगिनत खुशियों को खो देंगे जो चुपचाप हमारे आसपास मौजूद है। इसलिए आइए आज से एक छोटा सा संकल्प लें, शिकायत कम करेंगे, धन्यवाद ज्यादा देंगे, कमी कम देखेंगे, अच्छाई ज्यादा खोजेंगे, दोष कम गिनेंगे, समाधान ज्यादा ढूंढेंगे। क्योंकि जिस दिन हमारी सोच बदलती है, उसी दिन से हमारा जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कहना चाहूंगी कार्यक्रम के माध्यम से कि हर सुबह ये मत सोचिए आप कि आज क्या गलत होगा, बल्कि ये सोचिए कि आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि शिकायतों से भरा मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन कृतज्ञता से भरा मन छोटी सी खुशियों में भी मुस्कुराने का कारण ढूंढ लेता है। इसलिए जिंदगी आसान तब नहीं होती है जब समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि तब होती है जब हम हर परिस्थिति में मुस्कुराकर आगे बढ़ना सीख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि शिकायत करना हमारी परिस्थितियों को नहीं बदलता, बल्कि कई बार हमारी सोच को इतना घेर लेता है कि हमें अपने जीवन की अच्छाइयाँ दिखाई देना बंद हो जाती है। जब मन हर समय कमी, परेशानी और असंतोष पर ही केंद्रित रहता है, तब जीवन में मौजूद अवसर, रिश्ते, सीख, छोटी छोटी खुशियाँ भी अपना महत्व खोने लगती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि हमारे जीवन में कठिनाइयाँ है या नहीं, बल्कि यह है कि हम उन कठिनाइयों को किस दृष्टि से देखते हैं। जीवन में हर व्यक्ति के सामने चुनौती आती है, कोई आर्थिक संघर्ष से गुजरता है, तो कोई स्वास्थ्य की समस्या से, तो कोई रिश्तों की उलझनों से, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने की कठिनाइयों से। यदि हर कठिनाई के सामने हम केवल शिकायत करना चुनेंगे तो हम अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा उसी में खर्च कर देंगे, लेकिन यदि हम हर परिस्थिति से कुछ सीखने और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो वही कठिनाइयां हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाने का माध्यम बन सकती है। इसलिए ये याद रखिए दोस्तों कि शिकायत का सबसे बड़ा नुकसान केवल हमें नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी होता है। जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें करता है, उसके आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे भारी और निराशाजनक हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य, आशा और सकारात्मक सोच बनाए रखता है, वो अपने परिवार, मित्रों और समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए दोस्तों, हमारा व्यवहार केवल हमारा नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों का भविष्य भी प्रभावित करता है। इसलिए
कभी कभी जीवन में हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता के अनुसार परिस्थितियाँ हमें मिलती है। उस समय शिकायत करने के बजाय यदि हम धैर्य, विश्वास और प्रयास का साथ पकड़ लें, तो समय के साथ वही अनुभव हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। आज जो कठिनाई हमें बोझ लग रही है, वही कल हमें अधिक समझदार, संवेदनशील और मजबूत इंसान बना सकती है। इसलिए दोस्तों, हम अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन करें। हर दिन यह देखने की आदत डालने की क्या कमी है, उससे पहले यह देखें कि क्या हमारे पास है, क्या कोई हमारा अपना हमारा इंतजार कर रहा है, क्या हम स्वस्थ हैं, क्या हमारे पास सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। यदि इन प्रश्नों के उत्तर हाँ है, तो हमारे पास मुस्कुराने के कई कारण पहले से मौजूद हैं। तो दोस्तों, शिकायत करने से समय बीत जाता है, लेकिन समाधान खोजने से जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए हर दिन हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक शिकायतों का और दूसरा संभावनाओं का। चुनाव हमारा होता है कि हम अपने मन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए ऐसा जीवन चुने हम जहाँ शिकायतें कम हो, कृतज्ञता अधिक हो, जहाँ निराशा कम हो, प्रयास अधिक हो, और जहाँ हर नया दिन एक नई उम्मीद, नई मुस्कान और नए विश्वास के साथ शुरू हो। क्योंकि जीवन उन लोगों के लिए सबसे सुंदर बनता है जो परिस्थितियों से हारने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ना जानते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे आज के कार्यक्रम की बातें। आशा करती हूँ कि सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों, मैं कार्यक्रम में आपको एक और अंतिम गीत सुनवाना चाहूंगी। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए प्रेरणादायक विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जो चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी या दस्त में कमी, सांस फूलना इत्यादि एनीमिया के लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर अपने नजदीकी राज्य स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया की निःशुल्क जांच कराएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। आंगनबाड़ी केंद्रों एवं राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों में एनीमिया उपचार की IFA गोलियां निःशुल्क उपलब्ध हैं।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है।

भाई बोनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।